आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा, छोड़ दे। ऐसा कि नहीं है, उसके काम के ले रहे तो भगवान उठा ले, काम के हो तो आए भगवान, कितने निर्दयी तुमने क्यों ले लिया, ये संसार का स्वरूप है।
2: राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस सांसारिक मोह माया की दुनिया में जब हम किसी व्यक्ति विशेष से अटैच या बंधन में बन जाते हैं और उसी के साथ अपने सुख की अनुभूति करते हैं, पर जब वही व्यक्ति विशेष हमें दुख पहुंचाता है या हमें छोड़कर चला जाता है, वो उस स्थिति में हम उस व्यक्ति विशेष को कैसे भूल पाए और अपने मन को स्थिर रखकर भगवत जप नाम में चित्त को कैसे लगा सके महाराज जी?
3: कैसे उससे?
1: इसी का नाम आसक्ति है, जो आप कह रहे हैं उसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति होना सहज है, पर आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि में जो सुख का अनुभव करने के लिए आसक्ति करते हैं, वो अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही है। क्योंकि सुख तो भगवत स्वरूप है, भला नाशवान परिवर्तनशील शरीरों में कभी सुख मिला है क्या? सुख का तात्पर्य जैसे केवट को मिला, केवट श्री भगवान के चरण पखाड़ रहा है, भगवान बाद में उसको उतराई दे रहे ना, मना कर रहा है ना भगवान से, वो कह रहा अब कछु नाथ न चाही मोरे। और जब चरणों को पखार रहा है तो कैसा स्थिति, कैसी? अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज अश्रुपवाहित हो रहे। ऐसा आनंद, ऐसा सुख मिल रहा है कि भगवान से कह रहा है अब कुछ ले चाहिए, भगवान से कह रहा है। इसे सुख कहते हैं। प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, हमारी जो सुख की मांग है, चूंकि हम सुख सिंधु के अंश है, भगवान सुख समुद्र है और हम जीव हैं, उनके अंश है, तो हमारी मांग सुख ही है। हम ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी वस्तु स्वीकार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी बात सुनना चाहते हैं, ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं जो हमें सुख दे। देखो मूल में देखो, सबके सुख है, पर भला यहां कहां सुख है? विवेक से खोज करके देखो। इतने भोग भोगे, एक बार हम सैमसी में थे तो एक 92 वर्ष के गांव के जमींदार प्रधान थे और वो आया करते थे, तो एकांत में उनसे, उनका बाबा मतलब बुरा मत मानना, मैं केवल पूछ रहा हूं अपनी जानकारी के लिए, कि जब मेरे मन में ऐसी कोई स्फुरणा होती तो मुझे बहुत जलन होती है, क्योंकि हमारे मार्ग के विरुद्ध है। तो हमें लगता है कि मन को हम समझाते हैं कि बस 20-30 वर्ष की बात है, इसके बाद तो शांत होता है। आपका क्या अनुभव है? वो 92 वर्ष के थे, तो उनका, महाराज अभी तो आप बच्चा ही हैं, कहने में हमें शर्म लगती है, पर हम 92 वर्ष के हैं, पर हमने जैसा मन बचपन में देखा था, जवानी में देखा था, वैसे ही आज है। मैं योग्य किसी के नहीं हूं, पर मन की दशा वही। अब हमको भयंकर भय लगा कि इस मार्ग में मुझे इस पर तो विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, ये अवस्था के अनुसार तो नहीं जाएगा। फिर परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ब्रह्मलीन महापुरुष थे, उनसे फिर प्रश्न किया कैसे इस पर विजय प्राप्त की, फिर उन्होंने साधन पद्धतियां बताई गुरु कृपा से। तो ये जो हम सोचते हैं कि इन भोगों के भोगने से सुख मिलेगा, सच्ची बात, देखो आप लोग तो गृहस्थी में हो, कहां आपको ऐसा लगा कि अब कृतकृत्य भयों में, हे नाथ आज मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। ये कुछ क्षण के लिए भले थोड़ा मन तुम्हें ऐसा बावरा बना दे कि बस, लेकिन उसी उसी दूसरे दूसरे क्षण के लगते ही मन तुम्हें दूसरे भोग में, फिर बार बार भोगने की इच्छा, फिर नवीन, इसका मतलब है नहीं। अगर होता तो तृप्ति मिल जाती ना। तो हम अगर किसी व्यक्ति से या वस्तु से, आप तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कितने ऐसे नशेबाज लोग हैं जो कहते हैं मैं नशा नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। अब आप बताओ, अपना जीवन किसी नशे के अधीन कर देना, किसी व्यक्ति के अधीन कर देना, किसी भोग के अधीन कर देना, ये अज्ञान के कारण ही तो होता है। तो सुख भगवान में है ये पता नहीं है हमें, हमें लगता है सुख भोगों में है, और भगवान ने इस पूरे संसार को रच के एक पोस्टर लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी में कहा इसमें दुख ही दुख भरा है और अशाश्वतम, यहां कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। या नवम नवम, मन का क्या कार्य क्या है, नवम नवम, छोड़ो अब नया, अब नया सुधार करो, प्रभु का नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो। देखो हमारी मांगे क्या है, हमें कोई सुंदर रूप मिले, सुंदर रूप टिकाऊ होना चाहिए, और मेरा वो मित्र हो ऐसा जो मेरे लिए प्यार करे, केवल मेरे लिए प्यार करे, और मैं कभी उससे बिछड़ू ना, और वो सदैव मुझे सुख देता रहे। ये सबके मन में है, सबके मन में है, और सही दिशा ना होने के कारण हम उसे धन मान लेते हैं, हम उसे पुरुष मान लेते हैं, हम उसे स्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं। ये सारी की सारी बातें भगवान में है, उनका रूप अविनाशी, और एक बार जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, और भगवान सुख देते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। तुम्ही को तो सब कुछ दिया है उन्होंने, तुम्हारा क्या चाहिए, तुमको तो दिया है उन्होंने, तो दियम वस्तु गोविंदन तुम्हें समर्पय, बस इतनी बात है। अगर आप संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भाव कर ले, फिर आपको आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही भाव कर लिया था कि प्रभु मेरे इस रूप में है, तो वो रूप बदल जाएगा लेकिन प्रभु तो आपके रहेंगे ना, वो संभाल लेंगे। हम लोग प्रभु भावना करके जो वस्तु व्यक्ति में फंस जाते हैं तो वही फिर हमारे आगे जन्म का कारण होता है। अगर हम स्त्री रूप में फंस गए तो अगला जन्म स्त्री का, पुरुष रूप में फंस गए तो पुरुष, हिरण में फंस गए तो अगला जन्म हिरण का हुआ ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है, जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा, छोड़ देगा। है ऐसा कि नहीं है, फिर संसारिक संबंधों की तो बात जान ले दो। तो इसलिए जिन्हें स्वीकार करने पर कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ, वो है श्री भगवान, श्री किशोरी किशोर जी, लाडली लाल जी। अब मान जाओ जब आपको पता चल गया है कि सब स्वार्थ का स्वरूप है, तो उसके लिए मत रो। अब ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे मर जाए, ऐसा वर वरु चूड़लो अमर हो जाए, वो है श्री गिरधर गोपाल जी और श्री कृष्णचंद्र मीरा जी कह रहे हैं। मेरा तो चूड़ला अमर है, मेरा सुहाग तो श्री कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए भाई हमारे पास प्रश्न का उत्तर यही है कि नाम जप करो, अपनी गलती को सुधार करो। हम गलती में फंसते चले जाते हैं और कोई मुझे प्यार नहीं करता, जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है। अपने सुख के लिए सारी बातें हैं, ऐसे ही सबका संबंध समझ लो। जिस दिन अपना सुख, हम एक जगह थे तो एक वृद्धा महिला आई अपने पति के लिए, कहती महाराज भगवान से मनाओ कि उनको उठा ले। उठा ले का मतलब क्या, गिर पड़े है? बोले नहीं, वो पड़े पड़े हगते रहते, बड़ी दुर्गति प्राप्त करे, उठा ले। तो हमका तो लड़का है, बहू है, तुम है, सफाई करो, उनकी सेवा करो। बोले अब सब नहीं होता, बस आप इतनी कृपा करो, भगवान उठा ले। ये है संसार, ये है संसार। उसके काम के ले रहे तो भगवान उठा ले, काम के हो तो आए भगवान, कितने निर्दयी, तुमने क्यों ले लिया। ये संसार का स्वरूप है। तो आप समझो, थोड़ा विवेक को जागृत करो, मोह का नाश होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तभी भगवान से प्यार होगा, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। ये भाग दौड़ तभी शांत होगी जब तुम्हारे प्यारे भगवान हो जाएंगे। महालक्ष्मी पति क्या चाहिए, रूपवान है, सर्व सामर्थ्यशाली है। देखो सूर्य किसने बनाया, कितने पूरे ब्रह्मांडों को प्रकाश दे रहे, ये सब चिटिर पिटिर रात्रि में थोड़ा प्रकाश दे, देखो सूर्य कितने ब्रह्मांड को प्रकाश दे, कहीं भी चले जाओ है सूर्य, चंद्र का प्रकाश, सब ऑक्सीजन, सब जल, भोजन, शरीर, कितनी सुंदर है ना। कोई रचना करने वाला महान ईश्वर, हम उसको अपना क्यों ना माने, अपना प्रीतम मान लेना। अच्छा हम आज भी सत्संग में कह रहे थे, कई बार कहा है, अगर वो अनुभव में ना आता ना तो हम सबसे कह देते भैया लगे तो बचपन से है पर हाथ कुछ नहीं लगा, आगे मरने के बाद जो मिलेगा वो हमें पता नहीं, पर हमें कुछ हाथ नहीं लगा, हम कह देते। पर हम सच्ची कहते हैं कि वो है, इतने नजदीक हैं, इतना दुलार करते हैं कि उनकी बात सोच के केवल रोना ही आता है, दूसरी कोई बात नहीं रहती है। इसलिए उन्हीं से प्यार किया जाए। जो वास्तविक प्यार का निर्वाह करना जानते हैं, संसार प्यार का निर्वाह करना नहीं जानता है।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
6: और 9097160602।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
12: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौट आवे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटे तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत्र रथ लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से हो चले हैं।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हाँक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को न पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमरजैट पर।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: हाँ भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03 6200-42-34-03।
9: उत्तर बिहार का गौरव,
10: सारण प्रमंडल की शान,
9: गोपालगंज की धड़कन
10: और अपने भाषा की पहचान
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
6: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
6: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, नाबालिग से गैंग रेप पर मची खलबली, पुलिस जांच में जुटी। डॉक्टर से मांगी गई 12 लाख रुपए की रंगदारी। नरेनिया में खेत से मिला एक युवक का शव। सड़क पर मिले लाखों रुपए के आभूषण को पुलिस के पास किया जमा। और अलग अलग जगहों से 2 दर्जन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात जैसे ही सामने आई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना रविवार का है। इसके बाद पुलिस ने किशोरी के बयान पर मामला दर्ज किया है। किशोरी का मेडिकल चेकअप कराया गया है, डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज भी कराया गया। घटना के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी, जिसके बाद तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह युवती पीड़ित नाबालिग बच्ची की विधवा मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पुलिस इस कांड में आवश्यक कार्रवाई करने में जुट गई है। पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। हालांकि इस घटना के संदर्भ में खबर लिखने तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। एक डॉक्टर से 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा है, जिसने एक डॉक्टर को 12 लाख रुपए की रंगदारी फोन पर मांगी है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना के बाद पुलिस अब जांच कर रही है। डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की है। मामला भोरे थाना क्षेत्र के खजुरहा मोड़ स्थित गिरजा शंकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता का है। उन्होंने थाने में लिखित आवेदन देकर जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित चिकित्सक ने बताया कि 7 जून को उनके मोबाइल फोन पर 2 अलग अलग अज्ञात नंबरों से कॉल आए। फोन करने वाले ने खुद को कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा बताते हुए सीधे 12 लाख रुपए की मांग की और चेतावनी दिया कि अगर 48 घंटों के भीतर रंगदारी की रकम नहीं पहुंचाई गई तो उनके पूरे परिवार को जान से मारेगा। इस सीधे अल्टीमेटम के बाद से पीड़ित चिकित्सक और उनका पूरा परिवार गहरे खौफ और दहशत के साए में जीने को मजबूर है। चिकित्सक ने पुलिस से दोनों मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने तथा अपने परिवार को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी मनिंदर मिश्रा पर 19 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। वह बिहार पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है। गोपालगंज पुलिस ने इस आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। आरोपी पर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, रंगदारी और डकैती जैसे संगीन अपराध से जुड़े 19 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हाल ही में लाला छापर में हुए ज्वेलरी लूट कांड में भी यह मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। मीरगंज पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के नरैनिया में NH 531 के पास खेत से एक युवक का शव बरामद किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर FSL की टीम के साथ मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर हथुआ के सुहागपुर के रहने वाले युवक अनीस कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और चौवर में इसके शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने चौवर से शव को बरामद किया है। पुलिस अब मृतक के व्हाट्सएप नंबर पर मिली हत्या की सूचना और अन्य साक्ष्यों को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ईमानदारी और मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक युवक ने लाखों रुपए के गहने जो सड़क पर मिले थे वह पुलिस के पास ले जाकर सुपुर्द कर दिया। इसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के 2 व्यक्तियों साबिर एवं टुन्ना शाह द्वारा एक लेडीज पर्स थाने में जमा कराया गया। दोनों लोगों ने बताया कि यह पर्स उन्हें सड़क पर गिरा हुआ मिला था। पर्स की जांच करने पर पुलिस को इसके अंदर से सोने चांदी के आभूषण सहित कई सामान मिले। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पर्स के वास्तविक स्वामी की पहचान की और पहचान करने के बाद यह पर्स उन्हें सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि यह पर्स मीरा कुमारी पति राहुल महतो जो जोगियार थाना सिधवलिया की निवासी हैं उन्हीं का था और सड़क पर गिर गया था। पर्स जब उन्हें वापस मिला तो अपने गहने और कीमती सामान पाकर वे बड़ी खुश हुई। पुलिस और जिन लोगों ने यह पर्स थाने तक पहुँचाया उनका उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 दर्जन से अधिक लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया। इन सभी लोगों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें हत्या के प्रयास, लूट के मामले और शराब तस्करी के मामलों में सर्वाधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब और कई वाहन भी पकड़े हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार पुलिस अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए अभियान चला रही है और इसी कड़ी में यह गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि थावे थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यह आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था। पकड़ा गया आरोपी रत्नेश सिंह उर्फ झुन्ना है जो लछवार थाना थावे का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद आज पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज्य में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई तथा गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में राजद पार्टी ने सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्षों की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह और प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने भी कई प्रखंडों का दौरा कर धरना कार्यक्रम में भाग लिया। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने 130 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया और इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई गोपालपुर पुलिस ने नराहवा शुक्ल हाईवे पर की। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया। इसके अंदर से 130 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस मामले में फिरोज आलम पिता मोहम्मद कमरुद्दीन साकिन बखरी थाना मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी और शराब को जब्त कर अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी के कद्दावर नेता उद्योगपति राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू बाबू का एक मामला उपभोक्ता फोरम में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहां एक मामले में इनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस मामले में आज विधान परिषद के सदस्य राजीव बाबू के तरफ से अधिवक्ता अदालत में अपना पक्ष रखे। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक सप्ताह का वक्त लिया है। इस मामले में वादी धर्मेंद्र क्रांतिकारी का कहना है कि उन्होंने एक गाड़ी इनके एजेंसी से खरीदा था और वह गाड़ी लगातार खरीदने के दूसरे दिन से ही खराब हो गई थी। कई बार शिकायत के बाद भी गाड़ी का सर्विसिंग ठीक से नहीं कराया जा सका, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस किया। उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी को उनके पैसे वापस करने का आदेश दिए, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी एजेंसी के तरफ से उनका पैसा वापस नहीं किया गया। इसी मामले में एजेंसी के मालिक जो अभी बीजेपी के कद्दावर नेता और गोपालगंज से विधान परिषद के सदस्य हैं राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू बाबू पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जिला विधिज्ञ संघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। 11 जून तक सभी उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। इसको लेकर पूर्व महासचिव शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ महासचिव पद के लिए आज नामांकन किया। अधिवक्ताओं के बीच गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कुल 28 पदों के लिए नामांकन चल रहा है। चुनाव के लिए 24 जून को मतदान होगा और 25 जून को मतों की गिनती कर परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नाबालिग से गैंग रेप पर मची खलबली, पुलिस जांच में जुटी। डॉक्टर से मांगी गई 12 लाख रुपए की रंगदारी। नरेनिया में खेत से मिला एक युवक का शव। सड़क पर मिले लाखों रुपए के आभूषण को पुलिस के पास किया जमा। और अलग अलग जगहों से 2 दर्जन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
14: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
13: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
15: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
16: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
17: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
16: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
17: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
16: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
18: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
19: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
18: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
20: ठक ठक
21: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
20: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
15: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
8: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन।

0: डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर
1: आज ही संपर्क करें 7388894709 या 9198886973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: इन सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
8: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
7: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
9: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
10: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9557 97644।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894-18744।
11: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
12: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
13: इसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: RR मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो,
12: तो क्या हुआ?
11: तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना?

0: Hey guys, this is Ramji Gulati. Thank you for showing so much of love to Tere Bin Kiwe Rawangi. Guys, we've just re-uploaded the song and we need all your support. Jitna pyar aapne pehle diya, please continue to do so. Like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. For those who love me and my team, we'll subscribe here and we're going to promise you, we're going to give you a lot of songs more.
1: Nanna munna lahi hun, desh ka shipahi hun.
2: Ruko ruko beta. अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रावास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
11: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
12: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
10: और 90971602।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व नेताओं ने श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीते 12 वर्षों में बिहार समृद्ध हुआ। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे भी जारी रहेगी विकास यात्रा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयास और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बिहार समृद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को लिखे एक पत्र में श्री चौधरी ने कहा कि राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही संभव हुई है। मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को 12 साल की स्वर्णिम कार्यकाल की बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी बिहार को उनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत के दीर्घकालीन प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा एनडीए के सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बिहार समेत एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेंगे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर सरकार की भावी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी विचार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम जी राम जी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रूपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी के तहत प्रदेश के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अकुशल मजदूरी मद में राज्य सरकार ने 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इधर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए डाक विभाग के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों से प्रश्न पत्रों को स्टेट हब तक सुरक्षित लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 34 जिलों के 35 शहरों में स्थित 331 परीक्षा केंद्रों पर 1,56,061 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं आर्थिक अपराध इकाई ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए छात्रों से अपील की है कि प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के लिए कोई फोन, सोशल मीडिया या ईमेल से संदेश मिले तो तत्काल इसकी सूचना ईओयू या नजदीकी पुलिस थाने को दें। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान इन स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं दरभंगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में भी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही पटना, नालंदा और गया समेत दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में भी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार में कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कटिहार जिले की मघेली पंचायत के ग्यारिका गांव में बारिश के दौरान एक घर पर पीपल का पेड़ गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला और चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपए मासिक पेंशन की राशि भेजेंगे। यह राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी। बिहार बोर्ड ने सत्र 2026-27 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण में विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि सभी स्कूलों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने 30 जून तक सभी विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी निर्माण का लक्ष्य तय किया है। नई दिल्ली की विशेष MP MLA अदालत ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत द्वारा उनकी सजा पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी। श्री सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। इससे पहले उनकी सजा पर सुनवाई 9 जून को निर्धारित थी। पटना स्थित AN कॉलेज के पास हुए मैनहोल हादसे में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुटको ने संबंधित कार्य एजेंसी पर 2,01,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस हादसे में एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर स्थित एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुए अग्निकांड मामले में बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर सरकारी सेवा में रहते हुए निजी अस्पताल में काम करने का आरोप है। पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 15 किलो मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं किशनगंज जिले के कुरलीकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मकांटा चौक स्थित एक कबाड़खाने में छापेमारी कर पुलिस ने 70,00,000 रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी दीपक कुमार की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जेल के अंदर कैदी के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में 30 दिन के अंदर उद्योग लगाने की मिलेगी स्वीकृति। दैनिक जागरण लिखता है, देश की सबसे बड़ी जोजिला सुरंग के मिले दोनों छोर। दैनिक भास्कर की खास खबर है, दिल्ली NCR की तर्ज पर बनेगा पटना रिंग रोड, इसके 8वें और अंतिम हिस्से दिघवारा से सराय को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, फुटबॉल का वर्ल्ड वार, कल से शुरू होगा फुटबॉल का सबसे बड़ा महाकुंभ फीफा विश्व कप। आज अखबार की सुर्खी है, फतुहा में अमूल लगाएगी 200 करोड़ की डेयरी प्रसंस्करण इकाई, 200 लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार में स्कूल कॉलेज के समय नहीं चलेंगी कोचिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व नेताओं ने श्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीते 12 वर्षों में बिहार समृद्ध हुआ, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आगे भी जारी रहेगी विकास यात्रा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
11: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
12: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माई चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी हम योगेश जी कैमरे बोल रहे हैं।
1: जी जी, कैसे हैं योगेश जी?
2: बढ़िया है, अच्छा है।
1: तो क्या हो रहा था अभी?
2: अभी घर में है।
1: अच्छा, घर में है। खाना पीना हुआ?
2: हो गया जस्ट अभी।
1: अच्छा अच्छा, तो परिवार में सभी लोग कैसे हैं अभी?
2: सभी कुशल मंगल
1: है। ये बढ़िया है। गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
2: गाना आप हमें फिल्म मोहब्बतें से सुनवा देंगे, हमको हमी से चुरा लो।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है
2: जी? कुछ पांचे हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन देवांगन जी, मुकेश शर्मा जी, संतोष वैष्णव
1: जी। तो प्ले करेगा ना?
2: जी, धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
13: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: लाल बाबू मैं बोल रहा हूँ।
14: जी कैसे हैं लाल बाबू जी?
15: ठीक है, अपना बताइए।
14: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा है अभी?
15: बैठे हैं छह में
14: काम के पेड़ के नीचे की नीम के पेड़ के नीचे
15: काम भी हो रहा है।
14: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुना दे आज आप?
15: उद्गार फिल्म का मैं तेरा मीना सिंह तेरे साथी से।
14: और सुनाना भी है?
15: हाँ जी है, सूरज विकास आप है आपका टीम है।
14: तो प्ले कर दे गाना आपकी।
15: ठीक है
14: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉल किया

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध।

0: 1444।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: Now pick it up, pick it up.
5: Hello.
4: Now pick your phone up.
5: Hello.
4: Pick it up, pick it up.
5: Hello.
4: Now pick your phone up.
5: Hello.
6: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
7: हेलो,
6: हेलो,
7: हेलो, हेलो,
6: हेलो। भागे भागे फिरते हैं।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो, सलाम अलैकुम।
8: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
9: जी मैम, कैसी हैं?
8: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
9: सही है, ये गाना सुना है?
8: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
9: गाने का नाम मुझे सुनना है, तुम्हारे सिवा कुछ ना कहेंगे जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे।
8: जी और नाम भी बता दीजिए अपना श्रोताओं को।
9: मैं गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से बोल रहा हूँ।
8: जी जी, और सब बताइए गुलाम जी।
9: सब बढ़िया, अपना सुनाइए।
8: हमारा भी बढ़िया है, तभी ड्यूटी में है रूम पे?
9: जी जी रूम पे है।
8: अच्छा छुट्टी है?
9: जी जी।
8: चलिए बढ़िया है, तो एंजॉय करिए रूम पे बैठ के आज छुट्टी।
9: जी जी थैंक यू मैम,
8: वेलकम। गाना प्ले कर रहे हैं आपके?
9: ओके
8: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल पे।

0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी ठीक है, बैठ करके रूम में रेडियो बजा रहे हैं।
0: नाम बता दीजिए अपना श्रोताओं को।
1: मेरा नाम है मनुद्दीन अहमद, ग्राम जुमरिया मुचका गाँव
0: जी।
1: हमको गाना सुना दीजिए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं
0: हेलो।
1: हाँ
0: जी, और गाना सुनवाना भी है?
1: आपको सुनवाएंगे और पूरे टीम को सुनवाएंगे। कौन नहीं सुनेगा, सब कोई सुनेगा।
0: हाँ बिल्कुल, सब कोई सुनेगा।
1: कब सुनाइएगा सर?
0: ये आज शाम को 5 से 7 के बीच में।
1: अच्छा
0: ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
1: ठीक है।
2: मतलब

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: ठक ठक
7: काजी, आज

0: भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं
0: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: Jab phone kende bajte hai to kehte hai hello.
11: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
10: Bhage bhage phirte hai.
12: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम जी 90.4 FM में।
14: जी रमजान
13: जी, कैसे हैं रमजान जी?
14: बढ़िया।
13: तो क्या हो रहा था अभी?
14: वही हम लोग काम कर रहे हैं।
13: अच्छा काम पे ही हैं। तो आज कौन सा गाना सुनवा रहा हूँ?
14: सुनवा जी ताकत मूवी का।
13: जी कौन सा गाना?
14: पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाए वाला।
13: और सुनवाना भी है
14: जी आपको? हम अपने दोस्त के साथ सुनेंगे।
13: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी हम पचपरा से बोला जी बोलते नहीं।
1: जी क्या हाल चाल बा बोला जी?
0: ठीक है बा, आपन बताए?
1: हमरो बढ़िया बा। ये गर्मी में क्या होता है आजकल?
0: आज गर्मी में काफी पंखा कर बैठल बा आदमी।
1: पंखो तो घर में हवा देता,
0: पंखो का कर लेकिन मजबूरी बा न। मजबूरी बा न, पंखो तो गर्म हवा देता लेकिन मजबूरी बा। मान लीजिए बाहर में हवा तो आज तो थोड़ा बहुत हवा चल रहा बा,
1: सिसका था तनी मुनी।
0: और सब समाचार बताएं?
1: सब बढ़िया बा। अपने के बताएं, घर परिवार सब लोग कैसन बा?
0: सब कोई अच्छा बा।
1: चलिए बढ़िया के काम बा। तो कौन गाना सुनवा दी आज?
0: गाना सुनवा दी, घर द्वार फिल्म का गाना है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा।
1: जी
0: ये गाना सुनवा दी।
1: और डेडिकेट भी रही
0: आर ओवर सुने हम सुने बा, रेडियो के पूरा टीम सुनी, जितना जुड़ल बा सब कोई सुनी।
1: प्ले कर दी गाना?
0: हाँ हाँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
13: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
14: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
10: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
14: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
10: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
14: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
10: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
14: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
10: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460574106, मीरगंज ब्रांच में करें 9693101611।
14: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
10: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
15: Now pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हाँ,
2: वालेकुम सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में।
1: शिमला से बोलते हैं निकी सुमार
2: जी। जी कैसा बनी दादाजी?
1: ठीक बनी बाबू। गए रही कहाँ? दोस्तों कोई चलाओ ना वाला।
2: गए रहनी अपन छुट्टी में रहनी है, काम रहा अलग घर।
1: अच्छा, और घर सब ठीक बन?
2: हाँ, अभी सब कोई घर बढ़िया बा। रहुआ बताई रहुआ घर परिवार में सब लोग कैसे बा?
1: सब ठीक हो?
2: चलिए बढ़िया बात बा।
1: और अब भी अच्छा से गुजर गया।
2: तो गाना कौन सुनवा दिया आज रोज?
1: सुनवाओ अपना मन से को पुरान को वाली।
2: चलिए करी
1: ठीक बाबू।
2: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग,
0: कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं लाल बहादुर जी?
0: हम भी ठीक है जी मैम, हम लोग स्वच्छता कर्मी हैं, बैठे हुए हैं।
1: जी जी,
0: कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ना, हम लोग स्वच्छता अभियान का गाना सुनना है।
1: अच्छा, स्वच्छता अभियान का।
0: जी जी, किस तरह कचरा उठाना करना है, किस तरह सफाई करना है।
1: अच्छा अच्छा, तो बस आप ही लोग हैं कि और भी जो है गाँव के लोग भी है?
0: पूरे गांव के लोग हैं, हमारे टीम पूरी है।
1: अच्छा, पूरे पंचायत के लोग हैं।
0: जी जी
1: जी, तो सर मतलब पूरे पंचायत को यही समझाना है कि कैसे स्वच्छ रखना है।
0: प्रतिनिधि मुखिया जी है।
1: चलिए बढ़िया है।
0: तो हम लोग का स्टाफ का भी नाम हम बताना चाहेंगे।
1: बिल्कुल बताइए।
0: हमारे हैं कृष्ण लाल यादव, फोन नंबर वार्ड है नंबर और फरहुल शर्मा के नंबर, मेरे बस्तिक भाई, फोन नंबर वार्ड 11 नंबर और बोली लो और 10 नंबर और जितने भी ग्रामीण से लगे हैं को और भारत वर्ष।
1: चलिए
0: बढ़िया वाला सुना दीजिए, जाग लागल माई तारा
1: भारत माई पे
0: फाइट कर दी, गाँव गाँव में जाके माई जाग लागल माई तारा पर जाना है ना भोजपुरी में,
1: लागल बा कलंक भारत माई पे।
0: अच्छा,
1: ये वाला ना?
0: हाँ ये
1: जी, तो प्ले कर रहे हैं गाना
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी चॉइस में कॉल।

0: मेरा पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की?

0: चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87-894-18744।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
9: Now pick your phone up.
10: Hello?
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello?
9: Now pick your phone up.
11: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
13: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
12: मैडम जी, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
13: जी जी, कैसा है गोपाल जी?
12: बढ़िया है मैडम जी, अभी तो ये मूंग की कटाई चल रही है।
13: अच्छा अच्छा,
12: और क्या? हाँ जय वाला मैडम जी।
13: अच्छा, तो अभी तो काफी धूप है खेत में है अभी आप लोग?
12: हाँ धूप धूप भी है मैडम जी, अभी तो क्या है बारिश हुई है, आंधी भी आया था अभी तो।
13: अच्छा अच्छा,
12: और क्या?
13: तो अगर नहीं वो फिर कटाई होगी तो खेत में ही सब रुक जाएगा। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
12: गाना सुनना है वो वाला सुनना है, नाड़ी फिल्म का है ना, उदित नारायण साधना सरगम की आवाज में, ये वाला है नहीं? क्या मौसम आया है पूरब से मस्तानी पुरवाई, चलिए वाला।
13: जी जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
12: डीटी हरिओ मेरा तब जी है, सुनील साहू जी है, हमारे मांगीलाल धाकड़ जी है, ये है।
13: चलिए तो प्ले कर दे गाना आपकी।
12: जी
13: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
0: मीना एंड सुमन जी, कोनवा मोड़ से।
1: ओ, दोनों कहीं हैं क्या आप?
0: हाँ, मेरा बड़े दीदी है। अच्छा। हम लोग कॉल करते थे इस पे।
1: पहले तो आता था, काफी दिन बाद तो मैं आई है।
0: हाँ।
1: तो क्या हाल चाल है
0: मैम, कैसे है?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आपके
0: घर है?
1: चलिए, बढ़िया का काम है। तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
0: गाना नहीं है, किसकी को मैं जाए किस होटल में खाए, चलो इसकी लड़ाई चलो इसकी लड़ाई, वही गाना सुनना है।
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ, डेडिकेट करेंगे आपको और सारे दोस्तों को, पुराने नए जितने दोस्त हैं उन सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे गाना।
0: ठीक है मैम। ओके
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस
0: मैडम।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करे 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो मैडम
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: मैं मनान कपूरपुरा से
4: जी। क्या हाल चल रहे हैं मनान जी?
3: सब तो ठीक है। आप कब आ गए हैं जी सोनी जी?
4: हम तो सैटरडे से ही आए हुए हैं।
3: तो हम गुरुवार को हम कॉल नहीं किए हैं, कहीं काम में पड़ गए थे।
4: कोई नहीं, काम भी जरूरी है।
3: वो बुधवार का आज प्रोग्राम आज आप हम सुन रहे थे आज रेडियो पे। बहुत आदमी का कॉल हम सुन रहे हैं, वीडियो कॉल पे किससे बात की है वो भी बता रहा था आदमी। सब सुन के हमको खूब हंसी लग रहा था और अच्छा लग रहा था आपका प्रोग्राम सुन के। बहुत दिनों के बाद मिली है यहाँ। अब आप रहेंगे क्या इस पे, इस प्रोग्राम पे?
4: अभी हेलो माय चॉइस ही रहेंगे, लाइव ही आएंगे।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा है। एक और आई है क्या पर
4: भारती
3: जी? हाँ, तो वो आई है तो उन्हीं से दो चार बार हुआ है गाना करी हुए तो उसके बाद आप चले गए तो हमने सोचा कि आप छोड़ दिए क्या?
4: नहीं, कुछ काम था पर्सनल, समय लग गया।
3: तो वही ना, सबको वो भी किए थे थावे वाला वो जो एक है
4: प्रसाद।
3: हाँ, तो वो किया था तो वो भी बहुत मारूम होकर के बोल रहे हैं मैडम जी ठीक है, दो ही वर्ड में हानि करता हूँ। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये मौका ही उसमें नहीं मिलता था। नया आदमी के साथ में कौन सा बात कर रहे हो भाई?
4: थोड़ा सा उनको भी बात करने में वही चीज है, वो भी बोल रही थी हम नया है तो थोड़ा सा पहचान समय लगता है।
3: हाँ, हालांकि उनको हम थोड़ा सा चुटकी दिए हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, इंशाल्लाह आप जो है आगे बढ़ जाऊंगी, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसे बढ़ावा दिए हैं बातों से। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
4: अब नए आदमी से मिलकर थोड़ी सी हिचकिचाहट तो सबको होती है।
3: हाँ, एक प्रोग्राम में बोलती है कि बुधवार को और फलाने दिन को कॉल करें इतना नंबर पे, तो वो तो रटी रटाया बात को उतना रिकॉर्ड हुआ है
4: जी जी।
3: थोड़ा आपके जैसा हुआ है।
4: अच्छा अच्छा
3: आपके जैसा नहीं
4: पहला है तो पहले पहले है
3: तो हो जाएगा, एक्सपीरियंस में आ जाएंगे वो भी। लेकिन थोड़ा सा भी हम लोग का भी बात करने में बड़ा उजबुझाहट मालूम होता है।
4: समझ जाए, आपके लिए वो नहीं है, उनके लिए आप लोग नए हैं और पूरे जो भी उससे पहले काम की है उससे और ये पूरा एकदम से डिफरेंट है। ऐसा होता है डिफरेंस होता है। तो
3: मैडम वो गोपालगंज के रहते हैं वो?
4: अब इतना तो मुझे भी जानकारी नहीं है, आने के बाद से अभी बातचीत करने का मौका नहीं मिला उनसे, ऐसे काम भर बात होता है।
3: पहले दिन हम बात किए थे ना तो वो बता रहे थे कि नहीं हमें कोई सोनी को हम नहीं जानते हैं।
4: हाँ, तो वो नहीं जानती है नाम से, मतलब ऐसे जानती थी कि कोई सोनी काम करती है।
3: हम पूछे सोनी जी चली गई है क्या? तो नहीं, हम सोनी को नहीं जानता। सोनी जी बोल रहे हैं? तो नहीं नहीं नहीं, हम फलाने बोल रहे हैं। तो वही थोड़ा सा
4: नहीं थे, उसी बीच में वो आई है।
3: मैंने वो भी गोपालगंज है ना?
4: हाँ, गोपालगंज की है, इधर की है।
3: ठीक है, नजदीक में रहेगा तो अच्छा रहेगा, प्रोग्राम चलाते रहेंगे, आपको भी मौका मिलता रहेगा घूमने के लिए।
4: जो कोई रहेगा तो छुट्टी लेने भी थोड़ा।
3: एक प्रोग्राम के लिए आपको बार बार छुट्टी लेना पड़ता था, एक प्रोग्राम बराबर चालू रहेगा। चलिए, हम लोग का दुआ है कि आप लोग को प्रोग्राम में रहें और रेडियो को रिमझिम को आगे बढ़ाएं, है ना, तरक्की दे, यही दुआ है। साथ में आपको भी ऊपर वाला से हत्याब रखे आपको।
4: चलिए,
3: आगे तो हो गई तो हमको 7 अजूबे भी इस दुनिया में आते हुए अपनी जोड़ी धर्मवीर का यही गाना सुना दीजिए मेरा।
4: चलिए, और डेडिकेट करिएगा,
3: डेडिकेट खास कर आपको आपको आपको और साथ में वो भारती जी है, आपको उनको भी कहेंगे, उनको भी रेडियो प्रेमी और तो कहेंगे दूसरा और क्या। ठीक है मैडम
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद है माय चॉइस कॉल के।
5: 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, 7 अजूबे
1: इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, हर थोड़े से भाई टूटे ना ये।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: Hello?
9: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 94.4 FM में।
10: दीदी नमस्ते।
9: नमस्ते,
10: कहाँ थी इतना दिन से?
9: ये घर पे ही, कुछ काम थी।
10: वही बोल रही हूँ दीदी, नहीं आ रही है, लग रहा है निकल रहे हैं क्या बिना बताए।
9: ना बिना बताए नहीं जाएंगे, जाने से पहले बता के जाएंगे, बढ़िया सुविधाएं लेके जाएंगे।
10: अच्छा जी, सही है,
9: सही है ना?
10: हाँ,
9: इतना दिन अगर समय दिए हैं तो ऐसे ही कैसे चले जाएं?
10: जी बता के जाना चाहिए।
9: बिल्कुल बता के जाएंगे,
10: पता चल गया आप निकल गए, सब इंतजार करते रह गया।
9: ना ना ऐसा नहीं है, कुछ काम था। तो नाम बता दीजिए, नाम ध्यान नहीं आ रहा आपका, तो आवाज से पहचान रहे हैं आपको।
10: मैं सोनी गोपालगंज से।
9: अच्छा हाँ, तो खाना पीना हुआ सोनी जी आपका?
10: जी मेरा हो गया है। आपका?
9: हाँ जी मेरा भी हो गया है। तो कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
10: अपने पसंद से ही सुना दीजिए।
9: ये तो अलाउ नहीं है, पता ही है आपको।
10: अच्छा तो ये सुना दीजिए, दिल से दुआ करी ले, दिल वे से ही कही ले, सारा जहाँ के प्यार था तुहरे तमन में मिले, ना तू कुछ कहता ना हम कुछ कहती, तू सामने बैठा हम देखते रह जाते। यही वाला सॉन्ग सुना दीजिए।
9: जी बिल्कुल, और हम सामने बैठने के लिए तैयार हैं।
10: जी जी, वो तो और बढ़िया रहेगा।
9: बढ़िया रहेगा ना, और खाना पीना छोड़ के उसी से पेट भरेगा। और गाना डेडिकेट भी करिएगा
10: जी आपको, सोनू सर को, भारती दीदी को, और जितने सुनने वाले उन सभी को।
9: चलिए तो प्ले करे गाना
10: जी। थैंक यू,
9: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल की।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
0: नमस्ते जी, गाना सुनना हमें
1: जी। तो गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: नाम परमात्मा महतो जी कला मतुमिया से बोल रहे हैं, दिगंबर बुसारा
1: जी। जी कैसे हैं?
0: जी ठीक है जी, अपना सुनाइए।
1: हम भी बढ़िया है। तो खाना पीना हुआ कि नहीं?
0: खाना पीना तो अभी चाय पी रहे हैं जी, काम कर रहे हैं जी। 11 बजे चाय मिलता है यहाँ पे।
1: अच्छा अच्छा, ड्यूटी में ही है।
0: पंजाब में होशियारपुर में रहता हूँ मैं। गाना हमको सुनना है, तो खेसारीलाल का कोई भी सॉन्ग बढ़िया था।
1: खेसारीलाल का कोई भी?
0: हाँ जी।
1: चलिए, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: कब तक सुनना है? टाइम
1: शाम को 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है, और कल मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच।
0: अच्छा जी, और कॉल भी कॉल लगा रहे हैं, बिजी तो बिजी बता रहा था आपने।
1: हाँ, तो काफी सारे लिसनर हैं, कॉल कर रहे हैं तो बिजी तो जाएगा ही।
0: मौसम कैसे है गोपाल वाले अपना जिला में?
1: काफी भयानक वाला धूप हुआ है
0: यहाँ, गर्मी है।
1: अब अभी आपसे बात कर रहे हैं तो बाकी जो कॉलर होंगे वो लोग बोल रहे हैं कि बिजी जा रहा है, परेशान हो रहे हैं।
0: सही बात है, इससे हमको बताया।
1: तो ऐसे ही होता है। चलिए, तो गाना प्ले करें आपके।
0: जी पहले प्ले कर दीजिए
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्ते।

0: लास्ट में तरह से को सवाल पूछी
1: पूछी ना जी।
0: ये बताओ कि लिंग को तरह के होला?
1: तीन तरह के।
0: कौन कौन?
1: स्त्रीलिंग।
0: यस।
1: पुल्लिंग।
0: बिल्कुल यस।
1: अडरलिंग।
0: अब बुझा गए दुर्गेश नाई बना देवे थे हमके।
1: पूछी पूछी।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
8: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
7: और 90971602।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और हर रोज की तरह मैं आज भी आप सभी के बीच उपस्थित हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ। समय 9:20 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277 1665 96। ध्यान रखना है कि पुराने गाने का फरमाइश करना है। ये बातें और आप सभी से बीच हर रोज़ बताई जाती है और आग्रह की जाती है कि पुराने गाने के फरमाइश करें। तो आप लोग जब भी गाने का फरमाइश करें तो पुराने गाने की ही फरमाइश करें तो बेहतर रहेगा। तो कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मैसेज अवश्य करें। और हमारे पास पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, सॉन्ग रब्बा इश्क ना होवे, और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय क्या खैरियत है, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और कल वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, मैसेज करती हैं शबीना। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है विपुल सिंह फ्रॉम गोपालगंज से, सुनो भैया। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है आज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से और गाना सुनना है। पिछला हफ्ता कुछ मिस्टेक के कारण आपने दूसरा गाना प्ले कर दिया था और मेरा मनपसंद गाना नहीं प्ले हो सका। तो गाने की फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश। और फिर आगे मैसेज पहुंचा, अभी तो गाने प्ले हुए नहीं है, और मैसेज करती हैं निशा कि थैंक्स। चलिए आपको भी धन्यवाद है और बने रहे हमारे साथ, गाने एंजॉय करने अभी बाकी हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, सुनो भैया आज तो मेरा सॉन्ग सुना दीजिए और मेरा मैसेज नहीं जा रहा है क्या। तो मैसेज अभी जो हमने रीड किए हैं वही पहुंचा हुआ है, बाकी आप मैसेज किए तो पता नहीं, अभी मेरे पास तो इतना ही आया है। और इस मैसेज को करती हैं, अपना नाम नहीं बताई हैं, मुस्कान गोपालगंज से हैं। और आप आगे जो भी मैसेज हमने रिसीव नहीं कर पाए हैं उस मैसेज को भी आप रिसेंड करती हैं तो हो सके तो मेरे पास पहुंचे, तो आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल हम निशा के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। और अब्बा इश्क ना होवे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और अब्बा इश्क ना होवे अंदाज मम्मी से गाने की फरमाइश किया गया था निशा जी के तरफ से। और आगे मैसेज कई पहुंचे हुए लेकिन मैसेज से पहले हम एक आप सभी के बीच में सुझाव साझा करेंगे सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत। और आज हम जानेंगे पिछले दिन जाने टीबी के बारे में और आज जानेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, लू का उपचार। और सबसे पहले हीट स्ट्रोक गर्मी के मौसम में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, शरीर के तापमान नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसका उपचार है तुरंत रोगी को ठंडी एवं छायादार जगह पर ले जाएं, तंग या अतिरिक्त कपड़े ढीले कर दे ताकि शरीर को ठंडा होने में मदद मिले, ठंडे पानी की पट्टियाँ सिर या गर्दन बगल और जांघों पर रखे ताकि शरीर को ठंडा जल्द किया जा सके, पंखा चलाए या शरीर पर ठंडा पानी छिड़के, यदि रोगी होश में है तो ठंडा पानी या ORS या अन्य तरल पदार्थ पिलाए ताकि रोगी को राहत मिले, और यदि रोगी बेहोश हो तो उसे कुछ भी ना खाने पीने को दे, तुरंत डॉक्टर या अस्पताल में संपर्क करें क्योंकि हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी ऐसी समस्या दिखाई दे किसी भी व्यक्ति या आस पड़ोस घर में तो इसमें कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है, शरीर का तापमान सामान्य होने तक रोगी की निगरानी करते रहना है ताकि रोगी की हर समय की समस्या को आप जान सकें। इसका बचाव है तेज़ धूप में लंबे समय तक ना रहें, पर्याप्त पानी पिए, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक बाहर जाने से बचें। ये सारी हीट स्ट्रोक की गतिविधियां हैं और जिसमें बचाव इसकी देखभाल सारी इसमें शामिल है। तो आप लोग से हर दिन एक अपील करेगा रेडियो रिमझिम परिवार सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करें, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो भी रेडियो रिमझिम के माध्यम से थोड़ी सी अपील की जाए। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम की आगे बढ़ाएंगे। अगली मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और अगला गाना का फरमाइश भी पहुंचा हुआ है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे सॉन्ग सुनना है, याद याद याद बस याद रह जाती है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ सर प्ले कर दीजिएगा मेरा सॉन्ग। सनी राज पटेल जी, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ मेरा सॉन्ग बजा दीजिएगा और काफ़ी दिनों से मैसेज, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं परवेज जी नवादा से, तो बिल्कुल आपकी मैसेज तो हमें लगता है कि पहली बार ही पहुंचा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू हम भी हैं। वीरेंद्र गुप्ता अभिया खेखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मन करे तो संग चला दीजिएगा, मन नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी फरमाइश पूरे करने की कोशिश रहता है, बशर्ते हमारे पास जितना समय मिला है उतना ही में हम कुछ कर सकते हैं, उससे आगे तो कोई आदेश ही नहीं है, यदि आदेश होता है तो हम आगे कुछ कर पाते हैं। और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम जय माता दी सुनो भैया, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं शिव सागर दीवाना जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैसेज करते हैं दिलीप राम जी, दिल्ली से बने रहे हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं शबीना खातून की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश कल की पहुँची है, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है, और गाने का बोल है, जाने मन आज से दिल है तुम्हारा।
सुनाना चाहती हूँ आपको। और अफसाना अपी सबा अपी रोशनी अपी सजदाग जी गुड़िया जी हाजरा सिस्टर खुशी जी नीसा जी सोनी जी और शिल्पी जी समीर भाई कमरान भैया साहिल भाई दीपक भाई इरफान भैया गुलाम हुसैन भाई दिलीप भैया वीरेंद्र भैया लवली भाभी और श्रावण शर्मा जी और जो छूट गए उन सभी को डेडिकेट करती हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी जाने मन ऐसे दिल है तुम्हारा।

0: तुम्हारा।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
9: क्यों, क्या हुआ है?
8: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
9: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
8: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
12: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MCM 90.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू हम भी हैं। तो बिल्कुल आपकी मैसेज पहुँची है, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि कैसे हैं सर, स्ट्रॉन्ग, किसी से तुम प्यार करो। और इस मैसेज को करती हैं शरिया फ्रॉम अमवा मौजम से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हेलो सर मैं शनि राज पटेल। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, आखिर तुम भी आईने की तरह ही निकले, जो भी सामने आया तुम उसी के हो गए। इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी और आगे में शेष पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश प्ले होगी और गाने का बोल दिया गया है गली में आज चांद निकला। विपुल सिंह जी मैसेज किए हुए हैं तो इनकी गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 90.4 FM पे।

95.4 FM प्यारे से संगीत कार्यक्रम में SMS फरमाइश में प्यारे से सॉन्ग सुन रहे थे। गली में आज चांद निकला और इस गाने के फरमाइश किए हुए थे विपुल जी, और आगे गाने के फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी देहरादून से, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश किया गया है मौसम ये सुहाना। तो इनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे आशा भोसले जी की और सुरेश वाडकर जी की आवाज़ों में, और यह घर की इज्जत मूवी से गाने के फरमाइश किया गया है 1994 में आई हुई थी। तो चलिए आपकी फरमाइश को हम प्ले करते हैं रोहित जी, और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आप भी एंजॉय करें, और सुनते हैं तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल प्ले करते हैं, सुनते हैं।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रमजीम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी। और इस गाने की फरमाइश करने वाले रोहित जी देहरादून से, और यहाँ पे मैसेज करते हैं कि सुनो भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा मनपसंद गाना बजाया, इसके लिए थैंक यू। और बताना गाना कैसा लगा आपको। तो बिल्कुल काफ़ी प्यारी गाने की फरमाइश आपकी तरफ से, और आगे मैसेज आगे भी गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। और इनकी तरफ से कहा गया था कि मन करे तो नहीं, सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहता है। और इस गाने की फरमाइश करने वाली प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह से, और गाने का बोल दिया गया है, लाखों आशिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान। तो ये भी काफ़ी प्यारे गाने हैं, तो प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी अगली फरमाइश, लाखों आशिक मर जाते हैं तेरे एक मुस्कान पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडो पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सी डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99393965923।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861164।
8: टेडे रेम छे 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और अभी गाने सुनने थे लाखों आशिक मर जाते हैं। तेरे एक मुस्कान पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी आपके शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, वेरी नाइस सॉन्ग। मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, हो कमाल के सॉन्ग। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि दोस्त वो नहीं जो जान देता है, दोस्त वो भी नहीं जो मुस्कान देता है, सच्चा दोस्त वो भी वो है जो पानी में गिरे आंसू को भी पहचान लेता है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स का भी वेलकम कीजिए, शबीना खातो फ्रॉम दुलुलिया से। तो बिल्कुल आपके सभी फ्रेंड्स का सबहरे स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, राधे राधे सर जी, मैं सुजीत कुमार बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर से, और मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया कि सुपर सॉन्ग बज रहा है गली में, आज चांद निकला। सरिया फ्रॉम आमो मौजम से मैसेज किए हैं। और आगे मैसेज और अगली गाने की फरमाइश पूरी करते हैं, और अगली गाने की फरमाइश करते हैं परवेज जी नवादा से, और गाने का बोल देते हैं तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। तो चलिए आपकी भी फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी कसम खा लिए हैं तो जीतते रहिएगा, नहीं तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा, अनहोनी की संभावना बनी रहती है कसम खाने के बाद से, डर लगने रहता है। तो फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी, और आप भी इंजॉय करें।

सभी प्यारा संग रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे सुन रहे थे परवेज जी की फरमाइश तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश दिलीप जी की तरफ से है और इनके तरफ से गाने की बोल दिया गया है, सुबह सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा, ओल्ड सॉन्ग सुनाना चाहते हैं आपको शबीता जी, बबीता जी, सरफुद्दीन भाई, पंकज भाई, राघव भैया जी को और इनके जानने पहचानने वाले तमाम श्रोतागण को डेडिकेट करते हैं। तो इसलिए दिलीप जी आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम दिए हुए हैं लेकिन नाम लेने की अभी समय नहीं है, बहुत कम समय है मेरे पास और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे बहुत सारे भी मैसेज पहुँचे हुए हैं तो आप अपने गाने के साथ एंजॉय करें रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।

0: हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे सोनी और मैं हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने पसंदीदा शो योर वॉइस योर चॉइस के साथ। हर दिन की तरह आज भी बातें होगी आपकी फरमाइशों की, आपके प्यारे प्यारे मैसेज की, आपके अपने पेन की और साथ ही बीच बीच में सेहत से जुड़ी कुछ खास और जरूरी जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज स्टूडियो में मेरे साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक और खास, एक और शानदार साथी जो हम सब की रेडियो दोस्त है। शायद आप लोगों को पता हो या नहीं हो, लेकिन चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं अपनी नई आरजे आरजे मनोरमा जी का। बहुत बहुत स्वागत है मनोरमा जी आपका शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आज का ये सफ़र आप सभी श्रोताओं के लिए और भी यादगार और मनोरंजक होने वाला है। तो तैयार हो जाइए संगीत और बातों की मुस्कुराहटों और ढेर सारी मस्ती से भरे अगले कुछ घंटों के लिए, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना सो योर वॉइस योर चॉइस का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और मैं अभी से लेके 4 बजे तक शाम के आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, अब जिस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527888291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 72 77 16 65 96 पे। तो चलिए बातें बहुत हुई तो अपनी बातों को यहीं रोकेंगे और आज के शो की आगाज करेंगे एक खूबसूरत से गाने के साथ। तब तक आप सभी मैसेज करिए, बताइए कैसे हैं और गाना कैसा लगा। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। फिलहाल इंजॉय करते हैं आपकी मैसेज जब तक आती है, तब तक ये खूबसूरत सा गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुंच चुके हैं, तो चलिए इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं महताब दुबई से बोल रहा हूँ और मुझे गाना सुनना है, गाना का लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज मैम गाना सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और गाना है कमी नहीं लड़कियों की। बहुत बहुत स्वागत है आपका महताब जी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी काफी सारे मैसेज है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है एक हमारी नई आरजे, आरजे मनोरमा जी, तो ये भी बातें करेंगे आप लोगों से। फिलहाल कुछ मैसेज है, पहले शामिल कर लें। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, हम भी जुड़ गए हैं और गाना सुनना चाहते हैं पीपल के पतवा पे लिखती दिल की बात, और गाने की फरमाइश के साथ है इंद्रदेव जी। तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक डेरवा से जुड़े हुए हैं गुड्डू कुमार जी, नमस्कार मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ दिनेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं सोनी मैम नमस्कार, कैसी हैं आप, आपकी आवाज़ सुनने हुए 48 घंटा हो गया है, ओहो। और समय भी जोड़ के रखे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब आपको हमारी आवाज़ सुनने को मिल चुकी होगी, तो अब समय ख़त्म हो गया, 48 घंटा जो है उसे फिर से जुरो से कर दीजिए शुरू। और आगे बढ़ेंगे, इनकी तरफ से एक लाइन पहुंचा हुआ है काफ़ी खूबसूरत, लिख रहे हैं कि सुबह आँख खुलते ही आ गई याद तुम्हारी, सुबह आँख खुलते ही आ गई याद तुम्हारी, दिमाग में घुस गया तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा और हो गई मुस्कुराना, और हो गई मुस्कुरा कर दिल की शुरुआत हमारी हो। चलिए बहुत ही अच्छी बात। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है सिर्फ हाय और नाम मेंशन नहीं है, बाकी सारे मैसेज डिलीट कर दिए गए हैं। और सुनील कुशवाहा जी हैं मैहर एमपी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ दस्तक दिए हुए हैं, लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से और मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत राम कुमार जी आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ साधु राय जुड़े हुए हैं छपरा से और गाने की फरमाइश के साथ है, बिल्कुल फरमाइश प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ वॉइस मोचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते श्रुति मैम, श्याम सुंदर जुड़ चुके हैं संग्रामपुर से, लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, बिल्कुल आपको गाना सुनना है, आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत। दीनानाथ यादव है यहाँ कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत। धनाव से इरशाद मास्टर जी आ गए हैं, लिख रहे हैं कि हेलो हाय सोनी जी नमस्कार, ग्राम धनाव से कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, क्या हाल चाल है मैडम जी, मैं वॉइस भेज रहा हूँ, गाना प्ले कर दीजिएगा। और साथ में इनके हैं सुनने वाले हैं आजम अंसारी, नौशाद भाई, हनुमान भाई और सारे लोग, हम लोग बैठ कर आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश प्ले कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय सोनी जी और मनोरमा जी को नमस्कार, आज सुबह जब मैं हो आज मुझे ऐसे जरा सा लगा कि आपने मुझे याद किया है। और अली खान जी हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, अली अख्तर जी जुड़ चुके हैं कश्मीर से गाने की फरमाइश के साथ और गाना सुनना है पंडित जी बताएं ना ब्याह कब हुई, बिल्कुल फरमाइश प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी मुझे भी एक गीत सुनना है और करीब मूवी का गाना है, बिल्कुल सुना दीजिए, बिल्कुल सुना देंगे। जौनपुर उत्तर प्रदेश से सोनू वर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज है, सत्येंद्र कुमार जुड़ चुके हैं इराक से, बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून और वॉइस के साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। आगे यहाँ एक और सारा मैसेज है, बहुत सारा। और नान बाबू जुड़ चुके हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत। रामविलास जी हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से, फरमाइश के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आगे यहाँ एक और मैसेज है,
मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा जी हैं और नाम के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। एक और यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है तो आप नाम जरूर मेंशन करिए। प्रोफाइल में नाम अजय कुमार दिखा रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका, फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आज की पहली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और पहली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है इंस्टाग्राम से मेहताब सिद्दीकी जी का और उनको सुनना है गाना। तो मेहताब जी, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए, अपने गाने को सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अभी गाना सुन रहे थे, मेहताब सिद्दीकी जी की फरमाइश पहुंची थी और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया लिखना है थैंक यू सो मच पहले सॉन्ग बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ बहुत सारे मैसेज हैं और सन्यासी रंजन बाबा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं नमस्कार सोनी जी, हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है हाजिरी आपकी। और लिख रहे हैं कि पानी पीने से बुझती है प्यास, पानी पीने से बुझती है प्यास, पानी पीने से बुझती है प्यास, पहले पैर छूने पर पैसा देती थी, आजकल कंजूस हो गई है मेरी सास। ओहो, और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है। और लिख रहे हैं नमस्ते नमस्कार प्रणाम, अर्जुन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, साथ में कमलेश कुमार हैं जम्मू एंड कश्मीर से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ और भी सारे मैसेज है, शामिल करेंगे, उससे पहले बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारी प्ले करने वाली हैं हमारी नई आरज़े मनोरमा जी, तो चलिए मनोरमा जी अगली फरमाइश प्ले करिए, किनका है शामिल करिए।
1: हमारी अगली फरमाइश है इंद्रदेव जी का, पीपल के पतवा पे लिख दी दिल की बात, तो चलिए इंजॉय।

0: गाना बजाने के लिए धन्यवाद मैडम।
1: ठक ठक।
2: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। सो से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल। आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है जहूर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने की फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, आगे बढ़ेंगे आगे। और भी मैसेज है और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून, मुझे भी सॉन्ग सुनना है। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से और मुझको पिया ने देख लिया है रिदो के से, और सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं। और साथ में इनके साले जी हैं हरिंदर जी, पप्पू जी और बाकी रिमझिम से सभी दोस्तों को सुनना चाहते हैं। और मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शो में जुड़े और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि सुनी मैं आज सपने में देखा हूँ कि कोई नया दोस्त मिलने वाला है तो मिल गया मनोरमा जी के रूप में। और सुनी मैम आज मेरा भी आपका और आज मेरा भी सपना पूरा हो गया। ओहो तो चलिए बढ़िया है, सपना ऐसे ही सच होते रहे। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले जैसा कि हम बात किए थे कि आपकी फरमाइशों के साथ साथ बात करेंगे सेहत से जुड़ी कुछ खास बातें, तो आज हमारी यह जानकारी खास है नन्हे मुन्ने बच्चों यानी शिशु और उनकी माताओं के लिए। तो आइए जानते हैं कि एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात है, 1 से 1.5 साल तक के बच्चों के लिए माँ की दूध के साथ साथ उम्र के अनुसार पौष्टिक पूरक आहार देना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है वॉइस के माध्यम से, और मैसेज है श्याम सुंदर जी हैं संग्रामपुर से और इनको सुनना है गाना। तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: ये दोस्ती तेरे दम पे है, अक्षय कुमार का सॉन्ग, प्लीज दीदी सुनवा दीजिएगा।

0: थैंक यू सोनी दीदी गाना बजाने के लिए। रेडियो रेमजिन से जुड़ के अच्छा लगता है। अभी है महाराष्ट्र पुणे में, पेंट का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाना भी सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं।
1: चार रेडियो रेमजिन सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ काफी सारे मैसेज है। नौशाद अली जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, लिख रहे हैं कि कल प्रोग्राम नहीं चला, कभी कभी प्रोग्राम को विराम आप लोग दे देते हैं, ये प्रोग्राम हम लोग रोज सुनते हैं, प्लीज इस प्रोग्राम को चालू रखें। और मेरा गाने का फरमाइश है, आज जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है, ये गाना मुझे सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे नौशाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कोशिश है कि आगे मतलब विराम ना दें, कुछ ऐसा हो जाता है कि विराम देना पड़ता है। और आगे यहाँ नीश जी जुड़ चुके हैं, स्टूडेंट ऑफ द खान गोल्ड ग्लोबल से, और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। बड़े के आगे यहाँ मैसेज है, लिखे हैं कि हमारा भी गाना है, बचा दीजिए। बिल्कुल आप सबकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि बजा दी। और आगे लिख रहे हैं कि बागों में फूल गुलाब कोई चंदन से कम नहीं, रेडियो रिमझिम गोपालगंज बिहार कोई मुंबई से कम नहीं। और इस मैसेज के साथ है, नाम मेंशन नहीं है, नाम जरूर बताइए आप कौन है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें।

0: हुआ है उनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से। और कॉल वाले यार दिखने रहे हैं, आप लोग कहाँ है, कॉल करिए, आप लोग का भी इंतजार है। तो चलिए प्ले करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हेलो नमस्कार, सलाम अलैकुम सोनी मैम, हम कुवैत से जहूर आलम मैसेज कर रहा हूँ वॉइस, और रहने वाला हूँ गोपालगंज सदुआ के। हमको गाना सुनना है साजन साजन इश्क में जब जी घबराया, ये मूवी है दिल का रिश्ता, ये गाना सुनवा दीजिएगा। और भी दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ और इन जिन सभी को

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

खत्म ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रंजीम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हमारे पास और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हम भी वेट कर रहे हैं। और जी नमस्ते नमस्कार। और आगे लिखते हैं कि नफरत मत करना हमसे, हम सह नहीं पाएंगे। नफरत नहीं करना हमसे, हम सह नहीं पाएंगे। बस प्यार से कह देना अच्छे नहीं लगते हम, फिर कभी नजर नहीं आएंगे। और नान बाबू जी हैं बलमपुर से, बिल्कुल आप इंतजार कर रहे हैं, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। थोड़ा और इंतजार करिए और बढ़ेंगे आगे आज के अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ और भी मैसेज है, लिखे हैं कि मैं डेडिकेट है गाना मेरी वाइफ को, और जब आती होगी याद मेरी गाने की फरमाइश के साथ है, और नाम मेंशन नहीं है। और इधर

0: की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए, बने रहिए साथ में। और इनकी तरफ से लाइन है, लिख रहे हैं कि लोग मिल जाते हैं कहीं, लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, हम जिसे चाहते हैं दिल में रखना, फिर क्यों निकल जाते हैं आंखों में पानी बनकर। और यही सच्चाई है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ और भी मैसेज है। राकेश भारती जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम आज मेरा एक हफ्ता पूरा हो गया है। बताइए। जी हाँ, आपका आज एक हफ्ता पूरा हो चुका है। दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, और फरमाइश है तो भेज सकते हैं। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आखिर ये बैंक वालों का प्रॉब्लम क्या है, बैंक में रखे कलम से रस्सी बांध कर क्यों रखते हैं। हम उन पर भरोसा करके पूरी जमा पूंजी उनके पास रख देते हैं और उन्हें हम पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता। अब ये तो बैंक वालों की प्रॉब्लम है, मुझे भी नहीं पता। बात तो ये सोचने वाली है। और आप अगर फुर्सत में तो आप ही इसका जवाब दीजिए। सोचकर मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी, और अगली फरमाइश हमारे पास से शामिल करेंगे मनोरमा जी। तो चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किन की है। मनोरमा जी,
1: चलिए अगली फरमाइश से इरशाद मास्टर जी धनाव से। वॉइस पहुंचा हुआ है, चलिए सुनते हैं।
2: नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासीगंज जिले रोहतास बिहार से आपके कार्यक्रम से जुड़ चुका हूँ और वॉइस भेज रहा हूँ। बजा दीजिएगा गाने का लिंक, भेज दिया हूँ। सुनने वाले हम लोग सभी रोशन टेलर में बैठकर सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम, और जितने भी रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को सुनवाना चाहता हूँ।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 और सो है आप सभी का अपना योर वॉइस योर चॉइस का 1:01 हो चुके हैं शुरू घड़ी में। और अगर आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप इस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है, पहले उसे शामिल करेंगे। और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मोटरसाइकिल की दुकान पे जाओ तो मोबाइल गिरा रहता है, नाई के दुकान पे जाओ तो बाल गिरा रहता है, बैंक में जाओ तो पैसा क्यों नहीं गिरा रहता है, अनुभवी लोग बताएं। तो ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इतना अनुभव नहीं है। तो जो भी हमारे लिसनर अनुभवी हैं तो ज़रूर बताएं। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है, प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। यहाँ एक और मैसेज है, जीता था जिसके लिए गाने की फरमाइश के साथ हैं, जुड़े हुए हैं कल्याणी चौक से, नाम है इनका बलराम जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, मिजाजी यादव जी हैं कल्याण जी, मिजाजी यादव जी बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आगे यहाँ और भी सारे वॉइस हैं, मैसेज है, शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो चलिए पहले बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या हाल चल बा?
1: हाल चल ठीक बा, हम रमेश प्रसाद छावे से।
0: जी जी,
1: हाँ तो बहुत बढ़िया हवा बहुत बदलिया दिन भइल बा, अच्छा लगा था।
0: हाँ हाँ, आज मौसम ठंडा भइल बा।
1: हाँ, रात के बरखा भइल बा, समाचार में मिलल बा कि कितना दिन में घर गिर गइल बा गाछ के जड़ से।
0: शाली जी राव रोई जे बानी का।
1: हाँ बोले बोले बड़ी, तो हम तीन जना बाजे, बड़ बड़ी एक जनी छोट बड़ी, हम माझी लेन तो हमार मुलखान चल गई भगवान जी के।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे ले बानी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करने।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रंजिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी सारे मैसेज हैं, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बहुत बहुत स्वागत आपका, बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी की तरफ से फरमाइश पहुँच चुकी है और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, गुड्डू कुमार जी हैं, एक डेरावा से जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना। तो चलिए प्ले करते हैं, देखते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: नमस्कार मैडम, मैं गुड्डू कुमार, एक डेरावा कुहान टोला से मुझे गाना सुनना है, घूंघट की यार से दिल भर का दिलदार अधूरा रहता है, यही गाना सुनना है।
0: और अब ये गाना प्ले किए हैं गुड्डू कुमार जी की, काफी बढ़िया गाना, एंजॉय करते हैं गुड्डू जी की फरमाइश पे, इनके पसंद की गाना।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे गुड्डू कुमार जी की फरमाइश थी एक डिरवा से। और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और काफ़ी सारे मैसेज हैं। और यहाँ राकेश भारती जी हैं बक्सर से लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग कब बजेगा सुनिधि। बिल्कुल बजेगा, आपका भी थोड़ा इंतज़ार करिए। और आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि तेरे बिना टूटकर बिखर जाएंगे, तेरे बिना टूटकर बिखर जाएंगे, तुम मिल गए तो गुलशन की तरह खिल जाएंगे, तुम ना मिले तो जीते जी ही मर जाएंगे, तुम्हें जो पा लिया तो मर कर भी जी जाएंगे। क्या बात है। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक जी फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और लिख रहे हैं कि आज हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिलहाल यहाँ बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी हमारा गनवा कब बजेगा, गर्मी लागत पा बजा दी जल्दी तनी। बिल्कुल, और बने रहिए साथ में। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, ओ जाने वाले लौट के आजा। कुछ हमारे मित्र हैं विपुल जी पाजी मऊ के रहने वाले हैं, और अमरजीत जी सोनू यादव जी हरकेश वंशी जी बिहार के रहने वाले हैं, सभी के साथ गाना सुनना चाहते हैं। विधा निवास जी जुड़ चुके हैं मऊ जिला बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका, काफ़ी दिन बाद शो में आए, बने रहिए साथ में। और फरमाइश है आपकी, फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्ते। निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से, लिख रहे हैं कि सनी जी सोनी जी गोपालगंज का मौसम कैसा है बताइए। बोल रहे हैं सोन जो नया अभी भारती जी आई हैं, क्या उनको आपके जैसा भोजपुरी बोलने नहीं आता है क्या? उनको तो भोजपुरी बोलने आता है, पता नहीं लिसनर से बोल पाती है कि नहीं, ये तो हम ध्यान नहीं दिए हैं। क्या कोई बात है तो जरूर बताइए। और बिल्कुल आती है भोजपुरी बोलने, अगर बिहार में रह के भोजपुरी बोलने ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और बहुत बहुत स्वागत निजामुद्दीन जी आपको। एक बार यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि ऐसे ही गाते रहिए, बहुत ही अच्छा लगा आज का शो का पहला गाना, सुपर डुपर हिट, धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी दिल्ली से, और यहाँ उमा शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। लिख रहे हैं नमस्ते सोनी मैम। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले जैसा कि बात हुई थी हम बात करेंगे हेल्थ से जुड़ी छोटे छोटे टिप्स के बारे में। और लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चे यानी शिशु माँ और उनकी माँ की। तो प्यार श्रोताओं, एक से डेढ़ साल के बच्चों को दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौष्टिक भोजन देना चाहिए, जैसे दाल खिचड़ी फल और हरी सब्जियां। तब हरी सब्जियां की मतलब ये नहीं हुई कि कच्चा दे दे, उसको बॉयल करके थोड़ा थोड़ा करके उन्हीं के तरह और बिना मसाले का उसको बॉयल करें। और दाल में हो तो उसको मिक्स पूरे क्या करें उसको पेस्ट बना लें, और उसके बाद छोटे छोटे मतलब दिन भर में 3 से 4 बार छोटे बच्चों को खिलाएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ लिख रहे हैं कि मैम बजाइए हमारे विधा निवास चाचू का सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपके चाचू का सॉन्ग प्ले करेंगे, पाजी है यूपी से, थोड़ा इंतज़ार करिए। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हर लड़का सफल होगा अगर हम प्रेमिका अपने प्रेमी से सच्ची मोहब्बत करें और उसे बोल दे कि आप बस करियर बनाने पे ध्यान दो, मैं तुम्हें छोड़कर किसी भी परिस्थिति में नहीं जाऊंगी, दुनिया का कोई लड़का बर्बाद नहीं होगा। और आगे लिखते हैं कि अर्ज क्या है, एक कामयाब मर्द के पीछे सिर्फ औरत नहीं, एक बाप की पूरी जवानी होती है। यहाँ बिल्कुल। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका विधा निवास जी मऊ जिले से, तो आपकी गाने की फरमाइश है, थोड़ा इंतजार करिए, प्ले करेंगे। और यहाँ मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। रामचंद्रपुर से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए साथ में। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, प्रेम का कोई पासवर्ड नहीं होता। और भागलपुर जिला से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ज्योतिष जी, प्रमोद चौधरी जुड़ चुके हैं जय छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं गाना सुनना है और डेडिकेट करना है राकेश चौहान जी को और हिंद सौ। मेरा लॉन्ग हो गया है गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश भी हमारे पास पहुंचा हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं आपकी और वॉइस के माध्यम से पहुंचा हुआ है अगली फरमाइश, तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। और नान बाबू जुड़े हुए हैं बलमपुर उत्तर प्रदेश से।
1: हमको गाना सुनना है छुपा रुस्तम का गाना, टाइटल सॉन्ग सुनाना चाहते हैं रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को और खास करके आप दोनों लोग को। हम नान बाबू जिला बलरामपुर से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन, PBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
13: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिन्नताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम में। बढ़ते हैं आगे अगले मैसेज की तरफ। अगला मैसेज अब अगली फरमाइश से कॉल के तरफ देखते हैं, सुनते हैं इनकी फरमाइश।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंसी में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी,
0: क्या हाल चाल है कृष्णा जी? मेरा भी बिल्कुल बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
1: तो काम में लगे।
0: अच्छा, ड्यूटी में है?
1: ड्यूटी में है, छुट्टी हुआ है।
0: अच्छा,
1: कल कल परसों नंबर नोट किए थे। पहली बार लगाए।
0: चलिए, तो बता दीजिए आज पहली बार आपको कौन सा गाना सुना दें।
1: हमको तो गाना पहली बार सुनना है, नदिया के पार रमना में आई रहा।
0: साची कहें तो रेवन से हम दो बोला ना।
1: साची कहें तो रेवन से हम दो रमना में आई रहा। और और सब सुनाइए।
0: सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं, घर परिवार सभी लोग कैसे हैं?
1: सभी लोग ठीक हैं, जी रहे हैं बस।
0: तो बाहर का मौसम कैसा है अभी?
1: बाहर का बाहर हम थोड़ी हैं।
0: कहाँ है?
1: गोपालगंज में।
0: तो गोपालगंज में मैं तो बाहर नहीं हूँ, मैं तो ऑनियर हूँ। तो आप बाहर हैं, तो बाहर का मौसम अभी कैसा है?
1: मौसम तो ठीक है, ठंडा है।
0: वही पूछ रहे हैं कि जब अंदर आया तो मौसम बढ़िया ही था आज।

0: माध्यम से सुन रहे हैं अभी आप?
1: हाँ प्रसाद का प्रोग्राम सुनते हैं।
0: वो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अभी आप फोन में सुन रहे हैं या फिर रेडियो पे सुन रहे हैं?
1: नहीं नहीं, छोटा छोटा मोबाइल है।
0: अच्छा, एफएम के माध्यम से सुन रहे हैं?
1: एफएम के माध्यम से सुन रहे हैं।
0: चलिए, तो उसी फोन से कॉल किए हैं, उसी फोन से कॉल किए हैं कि फोन दूसरा ही है कॉल करने के लिए? चलिए ठीक है, गाना प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो।
1: दूसरा ही फोन है क्या आपका?

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करे 85070-32042 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
13: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
12: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
12: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
12: और 90-97-61-60-02।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
16: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
15: तो देर मत कीजिए,
16: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
17: ठक ठक।
18: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा मिला ही नहीं।
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
19: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
19: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
20: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
21: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
20: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप भी शो में जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश और मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम जब आप गुनगुनाती हैं तो दिल को छू जाता है, आपकी आवाज बहुत ही सुंदर लगता है, वेरी नाइस सॉन्ग। और विदा निवासी हैं मऊ जिले से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ और भी कुछ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जब आपका नाम जुबा पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, तसल्ली होती है हमारे दिल को कि चलो कोई तो है अपना जो हर वक्त याद आता है। और दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं वेरी नाइस प्रोग्राम मैडम जी। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। और लिख रहे हैं कि लग रहा है कि आज का सारा गाना आपकी आवाज़ में बज रहा है, तो चलिए इंजॉय करिए मेरी आवाज़ में ही आज के सारे गाने को। और उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से। और यहाँ मैसेज है कि मैम आप सिंगर हो क्या? सिंगर तो नहीं है, और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी से, लेकिन कोशिश करते हैं कि शायद सिंगर बन, सिंगर ना सही लेकिन थोड़ा अच्छे से गा सके। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारा प्ले करेंगी हमारी आरजे जी मनोरमा जी, तो चलिए प्ले करिए अगली फरमाइश को। और अगली फरमाइश है व्हाट्सएप के माध्यम से।

0: बोलिए जी।
1: अगली फरमाइश है विद्या निवास।
0: और अगली फरमाइश है विद्या निवास जी का मऊ जिले से, और इनको सुनना है गाना वो जाने वाले लौट के आजा। तो चलिए अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए आप सभी विद्या निवास जी की फरमाइश को रेडियो 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी मऊ जिला से विदा निवासी की। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ आगे मैसेज है लिखने की, जब आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको एकदम अच्छा आप ऐसा लगता है कि आपको इनाम दूं तो दूं कैसे। और मैसेज करने वाले दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, तो इनाम देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी शो में बने रहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी इनाम है आप सभी की तरफ से। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मुझे भी एक गाना सुनना है, सुना दीजिए, फिल्म वीर जरा से। और गाना का बोल है, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करते, लेकिन अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी, जैसे ही आपका एक सप्ताह होगा हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ अभी अभी दस्तक दिए हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई वांट टू लिसनिंग वंस सॉन्ग, प्लीज प्ले माय रिक्वेस्ट सॉन्ग एंड थैंक यू। और दिस सॉन्ग मैसेज करने वाले हैं सोनू जी सऊदी अरब से, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। और अभी 1:57 हो चुकी है हमारी स्टूडियो घड़ी में, तो आपकी फरमाइश जो है वो दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कॉल, कौन है कहाँ से जानते हैं गाने की फरमाइश को। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: गाना सुनना है।
0: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: अखिलेश कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अखिलेश जी?
1: हिरानदा से।
0: अच्छा अच्छा, ये कहाँ पड़ता है आपका गाँव? अच्छा, कुचायकोट की तरफ पड़ता है। तो आज गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: हिंदी सॉन्ग सुनना, हर किसी के दिल में कोई लड़की याद आती है।
0: हर किसी के दिल में किसी लड़की का ख्याल रहता है, ऐसा वाला है ना?
1: हाँ यही मैं है।
0: और सुनवाना भी है
1: मैम, सभी को जितने सुने उनको।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो में कॉल के, एंजॉय करिए अपने गाने को।

0: भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना बजा दी, बिल्कुल राहुल भी गाना बाजी। और मनीष रजाक है फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक बार यहाँ मैसेज है, सिर्फ आय का मैसेज है और प्रभु जी नाम दिखा रहा है। प्रोफाइल पर अपना नाम जरूर मेंशन करिए, कौन है कहाँ से। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। लेकिन गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसे हैं आप? और मैं भी जुड़ गया हूँ देहरादून से, और गाना सुनना है गाने का लिंक। बहुत बहुत स्वागत आपका और गाने की फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। तो फिर समाचार के बाद तो बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रमसिंह को, और यहाँ आगे बढ़ेंगे और भी सारे गाने की फरमाइश है। और लिख रहे हैं कि आवाज़ भी इतनी अच्छी है फिर भी शर्मा रही हैं आप, तो मैं कहाँ शर्मा रही हूँ। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका, हाँ मेंशन नहीं किए हैं भैया, नाम जरूर मेंशन करिए आप लोग कौन है और कहाँ से। और ये मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, नान बाबू जी है और इनको सुनना था गाना, और गाना प्ले हो गया, तो कौन शर्मा रहा है जरूर बताइए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और वॉइस मैसेज है और लिख रहे हैं कि आज मेरी बारी है, मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी बारी है, तो आपकी फरमाइश प्ले कर रहे हैं। और मैसेज करने वाले हैं दीपक जी मुंबई से, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँचिए।

0: और यहाँ वॉइस में कुछ पहुँचा ही नहीं है, वॉइस बिल्कुल खाली है। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश है सात समुंदर पार, और जिला भागलपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ज्योतिष कुमार जी, और इनकी तरफ से भी वॉइस है। तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की वॉइस है इनकी तरफ से।
1: जिला भागलपुर पीरपैती ग्राम प्रसवन्ना से बोल रहे हैं मैडम। मेरा गाना है सात समुंदर पार में, गाना सुना दीजिए।
2: शिमारू के नए वीडियो

और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी। ज्योतिष जी की और सुन रहे हैं ज्योतिष जी की फरमाइश, और इस गाने के पार हम चलेंगे दोपहर समाचार के तरफ। तो आप सभी कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आप सभी से मिलेंगे हम दोपहर समाचार के बाद। फिलहाल एंजॉय करते हैं ज्योतिष जी की फरमाइश, काफी बढ़िया गाने की फरमाइश, सात समुंदर पार, विश्वात्मा फिल्म से।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
4: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
2: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
5: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए वे सबसे बड़ा विषय। आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
6: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
2: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
8: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
8: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
2: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
9: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
10: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
2: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
11: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
13: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
14: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
13: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
14: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
13: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
14: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
15: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
13: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
17: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
16: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो 90.4 FM। सुनो।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861464।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99556 97644।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:44 हो चुके स्टूडियो घड़ी में, और अगर आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम इतना मेहनत करोगे फिर कल छुट्टी कर लेंगे आप। और मैसेज करने वाले धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, तो बिल्कुल नहीं, छुट्टी इतना मेहनत करने के बाद नहीं लेते हैं कि थक गए हैं। छुट्टी इसलिए लेते हैं कि कुछ मेरा निजी काम आन पड़ता है, इस कारण बस छुट्टी लेना पड़ता है। और बढ़ेंगे आगे आगे, हाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना 2 तारीख को बजा था तो मेरा भी गाना बजा दीजिए। बीर जारा फिल्म से है उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, इनकी फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक गाना है जो हमको सुनना है, लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और गाने की फरमाइश के साथ है। ग्राम बाबदर तहसील से शेगुआ जी लाल जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बनी रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है मैहर MP से, सुनील कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना, और गाने का बोल है तुझे देख के पहली बार। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दी, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी बढ़िया गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी मैया एमपी से सुनील कुशवाहा जी की और अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में। फिलहाल हम बात कर रहे थे गाने और फरमाइशों के साथ साथ सेहत से जुड़ी छोटे बच्चे और उसकी माँ की देखभाल पे। तो दोस्तों, अगर छोटे बच्चे अगर उनको दस्त हो जाए उसे, तो उसे खाना नहीं बंद करना है, उसे पर्याप्त तरल पदार्थ और डॉक्टर की सलाह के अनुसार देखभाल देना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर बच्चे को थोड़ा तेज बुखार हो या फिर बहुत सुस्त लग रहा हो तो घरेलू इलाज पर ही निर्भर ना रहे। घरेलू इलाज पर निर्भर ना रहने के बजाय तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से या डॉक्टर से सलाह लें। और बच्चे के मामले में साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। बच्चे को खाना खिलाने से पहले या फिर शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। और साथ ही बच्चे की सभी टीके समय पर लगवाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि टीकाकरण कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम मेरा भैया का फरमाइश है और आपकी चॉइस का गाना है, उसे गाने जरूर बजाइएगा बिल्कुल और गाने में गुनगुनाइएगा, आपसे निवेदन है। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी, बिल्कुल और बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास है रोहित जी का देहरादून से। तो चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश के गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और बाकी फरमाइशें भी है, थोड़ा सब्र रखिए, हम सबकी फरमाइशों को प्ले करेंगे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
6: क्यों, क्या हुआ है?
5: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
6: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
5: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजन 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश काफी सारी है हमारे पास, प्ले करेंगे। और सोने जी हैं सऊदी अरब से, थोड़ा इंतजार करिए, हम आपके भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ कॉल भी पहुँच रहे हैं तो बात करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है मनीष रुजाक है फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से, और इनकी पसंद की गाने चलिए प्ले करते हैं। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश है ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रंजिम को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से गाने की फरमाइश थी मनीष रजाक जी की और इनकी तरफ से मैं सुजय लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गाना में गुनगुनाने के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आगे मैसेज है गुरु नानकपुरा बठीड़ा पंजाब से किशोर साबलनिया सावित्री साबलनिया सुमन साबलनिया बेटी अंशु के साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लिख रहे हैं कि नमस्कार सोनी मैडम जी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम सुनकर हमने मैसेज भी कर दिया। ओहो और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास है कॉल के माध्यम से तो चलिए बात करते हैं देखते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार नाम बताइए अपना और कहाँ से।
1: मैं सुरेश कुशवाहा बोल रहे हैं श्यामपुर से।
0: जी कैसे हैं सुरेश जी।
1: बहुत अच्छा मैम आप कैसे हैं।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो खाना पीना हुआ।
1: हाँ खाना पीना हो गया।
0: बढ़िया और बताइए तबीयत पानी सब कैसा है।
1: बढ़िया है।
0: चलिए अच्छा कहीं काम है तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको।
1: गाना सुनवा दीजिए हम ऐसा कहीं आपको दिल वरना मिलेगा घर छोड़ के ना जाऊं कहीं घर ना मिलेगा।
0: और सुनवाना भी है
1: सभी को।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपकी।
1: जी मैम धन्यवाद।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किए।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। 3:13 हो चुके हैं सुबह घड़ी में और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास है व्हाट्सएप के माध्यम से। सोनू जी हैं, जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से, और उससे पहले यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं कि हर भूल तेरी माफ की, हर खता को तेरी भुला दिया। गम यह है कि मेरे प्यार का, गम यह है कि मेरे प्यार का तूने बेवफा बनके सिला दिया हो। और आगे लिखते हैं कि मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गए, ना सोचा ना समझा खफा हो गए। दुनिया में किसको हम अपना कहे अगर तुम बेवफा हो गए। और ये मैसेज करने वाले हैं मनीष शजाग जी, फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। और आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय मैडम जी कैसी हैं, मैं बिल्कुल बढ़िया। और कोलकाता से मैसेज पहुंचा हुआ है, मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका नाम नहीं है, संजय कुमार नाम है इनका। बहुत बहुत स्वागत संजय जी, आपका बने रही हमारे साथ। और यहाँ मैसेज है, निर्मला कुमारी जुड़ चुकी हैं खादीपुर से, बहुत बहुत स्वागत निर्मला जी आपका। एक और यहाँ मैसेज है और शामिल करेंगे, उससे पहले अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी आप सभी को, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जितने लोगों ने भी गाने की फरमाइश की, अच्छे गाने की फरमाइश किया, और उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम को अच्छे से चलाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं सोनू जी सऊदी अरब से, तो चलिए सुनते हैं सोनू जी की फरमाइश पे इनके पसंद के गाने को, सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: पता है कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सी डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ बढ़ेंगे आगे आज के अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश काफी सारे हैं और बढ़ेंगे आगे। यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो काफी बढ़िया गाने की फरमाइश है जो कि मुझे भी काफी पसंद है, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद के गाने रेडियो रिमझिम पे। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी खूबसूरत गाना सुन रहे थे वीर जरा फिल्म से उमा शंकर मिश्रा जी की फरमाइश पर। और इनकी तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, ऐसे ही खुश रहिए, भगवान कभी भी आपको गम ना दे। और इनकी तरफ से मैसेज था कि मेरे गाने के साथ आपको गुनगुनाना भी है। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, सुपर लाजवाब मस्त सॉन्ग रोहित जी है देहरादून से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही पसंद उमदा और उमा सिंह जी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मेरा कहना है कि यानी सुधरने का कोई चांस नहीं है, जैसे है बस वैसे ही रहेंगे, चलिए ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि योर वॉइस योर चॉइस का प्रोग्राम कितने बजे से कितने बजे तक चल रहा है? अभी मैं आजाद अंसारी सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब का तो समय पता नहीं, इंडिया के समय से अगर बात करें तो दोपहर का 12 बजे से शाम को 4 बजे तक योर वॉइस योर चॉइस का कार्यक्रम चलता है। आप इसके बीच में कभी भी शो से जुड़ सकते हैं जिसमें 2:15 से न्यूज होता है और फिर आप सभी के बीच न्यूज के बाद हम हाजिर हो जाते हैं। तो 4 बजे तक ये शो चलता है, उस हिसाब से आप अपना समय सेट कर सकते हैं। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास है वो भी है दिल्ली से दिनेश मिश्रा जी की, और इनको भी सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर दिया। और अगली फरमाइश जो है वो गाने की फरमाइश है, छूछे जानी घूंघटा उठैया। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिया।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903769015 पे।

0: 9451120001।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे अपना। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि बुढ़े नहीं होंगे क्या मैडम जी, ऐसे ही रहिएगा। जय माता दी मैडम जी। और शिव सागर दीवाना है जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो बुढ़े तो सब होते हैं, लेकिन हम दिल से हमेशा जवान रहेंगे और अपने स्वभाव से वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। सनम उम्र का बढ़ना तो तय है, लेकिन इंसान की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके व्यवहार, मुस्कान और अपनेपन से होता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगी जैसे हैं अभी, वैसे ही रहेंगे और बढ़ेंगे आगे। यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि चौबीस घंटा चलता तब भी कम है, कैसे चार घंटा बीत जाते हैं पता नहीं चलता। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। जी हाँ, और मुझे भी पता नहीं चलता कि चार घंटा कैसे बीत गया आप सभी के साथ। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि ऑन टाइम फीडबैक भेज रहा हूँ, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ सोनी मैम। नेक्स्ट टाइम से इस बात का ख्याल रखूँगा कि तुरंत फीडबैक भेजूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरा गाना बजाएं। और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने फरमाइश की, हम प्ले किए। और कई बार ऐसा होता है कि हम गाने की फरमाइश करते हैं, रेडियो तो सुनते हैं लेकिन रिप्लाई करने का समय नहीं मिलता। तो जब भी समय मिले तभी रिप्लाई करिए, जब समय मिले शो से जुड़ जाया करिए। और लेट से रिप्लाई करने के लिए कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहला ज़रूरी काम है कि जो भी आपकी काम है, पहला प्रायोरिटी वही है कि आप अपना काम निपटाएं, उसके बाद के बाकी काम होते हैं। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले एक और यहाँ मैसेज पहुँचा अभी अभी। और गणेश कुमार जुड़ चुके हैं पिपरा नारायण से, लिख रहे हैं कि क्या हाल है दी। और पवन सिंह की आवाज़ में भोजपुरी गाना सुनना है, सुना दीजिए बिल्कुल, फरमाइश है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। आगे यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि सॉन्ग है बिछड़े हुए मिलेंगे फिर किस्मत से मिला दिया। और शगीर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और डेडिकेट कर रहे हैं दिलीप भाई, कमरान भाई, बरजू भाई, भास्कर जी और उत्तम सोनी को और सभी श्रोताओं को, बहुत बहुत स्वागत आपका। सगीर आलम अंसारी जी, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, तेजपुर आसाम से जुड़े। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और आगे बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए बिल्कुल। और राकेश भाटी है बक्सर से और इनको सुनना है गाना

और आपके गाने की फरमाइश है। लाल दुपट्टा उड़ गया, बिल्कुल आपसे नाराज नहीं है, और आपके गाने की फरमाइश जो है वो गुम हो गई थी और फिर से मिल चुकी है। तो चलिए राकेश जी, आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे राकेश भारती जी बक्सर से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया थैंक यू गाना बजाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ अखिलेश शाह ने जुड़ चुके हैं पूर्वी चंपारण जिला से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी मैडम जी, सभी को बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हम बात कर रहे थे सेहत से जुड़ी कुछ टिप्स पे, कुछ बातें पे, जो कि आज बात कर रहे थे हम छोटे बच्चे और उसकी माँ के बारे में, जो कि होते हैं नवजात शिशु, उनके बारे में। तो बढ़ेंगे आगे, और यहाँ अभी तक हमने बात की कि उनके देखभाल कैसे करनी है और बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। छोटे और बच्चे के साथ साथ माँ का भी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, माँ का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो माँ का ध्यान भी रखे कैसे, तो माँ का ध्यान रखे हम, उनका जो भी खाना हो वो पौष्टिक हो, और वो ध्यान घर वाले रख सकते हैं। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी और आराम मिलना बहुत ज़रूरी होता है माँ के लिए, और माँ को आराम मिलेगा तभी बच्चे को भी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। और समय पर टीकाकरण, बच्चे के सभी टीके समय पर लगवाए, कई गंभीर बीमारियों से बचाव का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है जो भी टीकाकरण है वो समय पे कराएं बच्चे की। कई लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो टीका बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचाता है। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश यहाँ, उससे पहले मैसेज है, अमित कुमार जुड़े हुए हैं समस्तीपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो
1: हेलो मैडम जी, प्रणाम
0: जी। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम नगेंद्र माझी उर्फ दयवान जी या घर पकौली बोदुआ ब्लॉक फुलवरिया से बोलते हैं
0: जी। का हाल चाल बा?
1: ठीक हूँ मैडम जी, अपन समाचार बताए।
0: हमरो समाचार बढ़िया बा।
1: हाँ।
0: का होत रहे अभी?
1: ए का होता है, बारह वर्ष का प्रोग्राम सुने नहीं हो, सुना था नहीं, कोनो काम रहला तो काम होला ना, तो अपन टाइम पास।
0: जी जी बिल्कुल।
1: हाँ आज बुध हो जानी? हाँ तो बुध हो तो हम कौन देश मैंने, अरे ज्यादा ना लेकिन मैंने सब लोग का माने नहीं, लेकिन मैंने मेन में माने नहीं, हम बुध के दिन कृष्ण भगवान के जाननी।
0: अच्छा
1: हाँ, ढेर पूजा पाठ ना मन में ऐसी करे नहीं, नाम लेते रहे नहीं मन में।
0: जी जी।
1: बोल फिल्म के गाना हम गावा, तनी तनकी ऐसा बजा दे।
0: जी बिल्कुल जी जी।

राधा बोल तूने का किया, अपने किशन को अपने किशन को अपने किशन को।

0: तूने का किया अपने किसान को, अपने किसान को, अपने किसान को दिल दे दिया। बोल राधा बोल। मैडम जी,
1: जी।
0: यह गाना बजा दिया, सुनिए। सबसे पहले रहुआ के सुनाओ के चाहते नहीं।
1: जी जी धन्यवाद।
0: अब सुनिए, जितना लोग तुरंत रेडियो रिमझिम सब लोग के विदेश विदेश ले विदेश में भाई लो हमार काम करता बचाई कितना मने ये थी वाला बात बहानू। अब सुनो का लो।
1: जी जी।
0: तो मने ठीक बा, मने हमारा की से मने ऐसी बा मनोकामना ये हमार बा की भगवान से अल्लाह से की भाई लो नीमन से अपन शरीर बचाते हुए काम करो लो, रेडियो रिमझिम सुनते रहे लो जननी।
1: जी जी।
0: का नाम की पूरा परिवार है बालू हमारे माने यो सुनी दो।
1: चलिए सब परिवार के साथ एंजॉय करी। जी
0: हाँ ठीक बात। प्रणाम
1: प्रणाम। गाना प्ले कर दिल बनी, एंजॉय करी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी कॉल के।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और 3:54 हो चुके स्टूडियो घड़ी में और बढ़ेंगे आगे आज के अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश, हाँ बहुत सारी फरमाइश है लेकिन अगली फरमाइश जो हम प्ले करने वाले हैं वो है, नाम है इनका प्रभु वाले जी और इनको सुनना है गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो चलिए अगली फरमाइश आपकी प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: देखा तो ऐसा लगा जैसे
2: जैसे क्या

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुंची थी प्रभु जी की, और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास है पिपरा नारायण से गणेश कुमार जी का, और यहाँ मैसेज है इसलिए लिखे हैं सुनी मैम बाय बाय। दिनेश मिश्रा है दिल्ली से, और अगली फरमाइश प्ले करेंगे गणेश कुमार जी की, और उनको सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में गाना। तो चले अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। और पापे पड़ी पवन सिंह की आवाज़ में गाना, और इसी गाने के साथ दीजिए आप सभी आज के इस शो से मुझे जाने की इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
2: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034648652 पे।
6: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम
6: सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
4: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 8570-32042 पे।
13: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: प्राणी यह सांसारिक जीवन में उलझ करके काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पड़ के असली धन के गंवा देता और अंतिम समय में पछतावता। कैसे बड़ा ही सुंदर कल्पना बा
1: कि सब धन सियारा खाइले

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
2: और 9097-6160-02।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: उत्तर बिहार का गौरव,
6: सारण प्रमंडल की शान,
5: गोपालगंज की धड़कन
6: और अपने भाषा की पहचान,
5: रेडियो रिद्म 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।
7: तुम लोगों ने आहट नहीं सुनी क्या?
8: किसकी आहट?
7: ए, पलट के देख, शेरनी आ रही है।
8: कौन शेरनी? कहाँ की शेरनी?
7: यूपी बिहार की शेरनी, अक्षरा सिंह।

पहले जरा सोच ले, मेरा कुछ नहीं होगा तेरा, तेरा हो जाना कबाड़ है। अरे तुझसे ऐसे कितनों को अकेले रगड़ के तोड़े हैं हम। अरे पटना की लड़की

0: पटना की लड़की है भाई, डरते थोड़े ना, याद है ना, अकेले काफी पानी हम।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9528874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून,
2: हम गोल्डन तलाक सिलसिले से बोल रहे हैं
1: जी। क्या हाल है आपका?
2: बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है अभी?
2: बस काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, सब बढ़िया है, तबियत ठीक है। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है।
1: मौसम तो बहुत गर्म है, धूप बहुत ज्यादा तेज निकल रहा है।
2: धूप बहुत ज्यादा है और हवा भी नहीं चल रहा है ना, तो बहुत गर्म है। हमको एक गाना सुनना था।
1: बताइए कौन सा सॉन्ग?
2: नमक लाल फिल्म का वो गाना है, पग घुंघरु बांध निरना की थी। ये गाना बजा दीजिएगा। और ये गाना मैं जितने रेडियो रंजन सुनने वाले होता है सबको सुनवाना चाहता हूँ, जो मेरे दुकान पे काम करते हैं और सबको सुनवाना चाहता हूँ।
1: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी योगेश जांगड़े भी मैं करा छत्तीसगढ़ से।
1: क्या हाल है आपका?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: तबीयत ठीक है?
0: एकदम बढ़िया है।
1: बढ़िया। और मौसम बताइए उधर का, आज मौसम कैसा है?
0: मौसम धूप है, गर्मी है, अभी बारिश का इंतजार है।
1: बारिश तो पता नहीं कब होगा।
0: जी
1: तो और सब कब ठीक है ना?
0: और बाकी सब ठीक है।
1: जी चलिए बताइए क्या फरमाइश है आप?
0: फिल्म है सच्चा झूठा गीत के बोल है, यूं ही आती हो तुम ख्याल।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: कुछ मित्र है, श्रीपाल गोयल जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, दिलीप पहुजा जी, रोशन दिवान।
1: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे।
0: धन्यवाद
1: रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: थैंक यू, और आपको नमस्कार।
11: नमस्कार,
12: अनिल बात कर रहा हूँ जोधपुर से।
11: हाँ जी अनिल जी, क्या हाल है आपका?
12: बस बढ़िया है, अपना बताइए।
11: मेरा भी बढ़िया है।
12: तब मौसम कैसा है?
11: इधर का मौसम अभी बहुत गर्म है।
12: हाँ, इधर भी वही हाल है।
11: तो आपकी तबीयत कैसी है?
12: तबीयत ठीक है, अच्छा है, और थोड़ा सा सावधानी से तो रहना ही पड़ेगा इस धूप
11: में। तो सब घर परिवार में बढ़िया है?
12: सभी लोग ठीक हैं।
11: चलिए, अच्छी बात है
12: जी।
11: खाना हो गया आपका?
12: हाँ, खाना वाना खा के आए हुए हैं काम पे।
11: बताइए, आज कौन सी फरमाइश है आपकी?
12: आज सोच रहे हैं भोजपुरी गाना सुनने का, क्योंकि काफी दिन से सिर्फ हिंदी गाने ही फरमाइश किए हुए हैं।
11: तो बता दीजिए कौन सा भोजपुरी सॉन्ग सुनेंगे?
12: एक गीत है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मूवी से, भोजपुरी मूवी है, उसी का गाना है, मुस्की मार के जे बोले ला करे जो, ये वाला।
11: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
12: सभी लोगों को और जितने लोग सुन रहे हैं बाकी।
11: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: थैंक यू मैम।

0: मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द है निगाहे जमाने की, खुद को बना इस कदर काबिल, खुद को बना इस कदर काबिल, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: मैं कमरान रशीद भिले चौकड़ी मकान
1: जी, क्या हाल है आपका?
0: मेरा हाल ठीक है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है,
0: बढ़िया है।
1: बढ़िया है। तो क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ नहीं, बस आपको कॉल लगा रहा था। मैं बोला कॉल लगाऊं, आज तो मंडे है, हेलो माय चॉइस का रिकॉर्डिंग होगा
1: जी।
0: देखिए लगाया तो लग भी गया, और नाश्ता उस्ता हुआ?
1: मेरा हो गया, आपका हो गया?
0: हाँ मेरा तो हो गया है नाश्ता, तो मुझे भी 1 बजे खाना होगा। गर्मी तो इतना गिर रहा है, क्या बोला जाए गर्मी को।
1: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है।
0: हाँ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो मुझे इस गर्मी में नींबू पानी ज्यादा लिया करे, और इस गर्मी में अगर कोई काम ना हो तो बाहर जाना ही बेकार है।
1: ये तो बात,
0: बहुत गर्मी है, और अभी हरा सब्जी खाए, तेल मसाला कम डाले, ये सब अच्छा रहे, ज्यादा खीरा हुआ, तरबूज हुआ, ये सब मैंने ठंडा चीज। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज बताना कोई बुराई थोड़ी है,
1: नहीं
0: बताना ही चाहिए, जरूरी हो हर पर ठीक है। वो आज सुना दी,
1: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
0: वो सॉन्ग सुनना है मूवी है कहो प्यार, उसमें का गाना है प्यार के तस्ती में लहरों के मसले।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सबसे पहले आपको आयशा, शबनम सिद्दीकी, सबीना, हेना, हाजरा, तरी, जहां रानी, हरकुआ, निशा भारती, निशा सुकुलुआ, और अहमद अली, और दिलीप राम, समीर आलम, इरफानी, सबीर आलम अंसारी, आजाद अंसारी, सऊदी, गुलाम हुसैन, और जितने लोग सुन रहे हैं, हाँ भास्कर भाई, बरजू भाई, उत्तम सोनी, दिलेंदर भाई, मुकेश भाई, उमा शंकर भाई, तो सभी को साथ सुना दीजिए हम गाना।
1: जी जी बिल्कुल,
0: अच्छा लगा आपसे बात करके हमें, अब बहुत अच्छा है चॉइस कर रही है, आपको अच्छा आइडिया हो गया है, और रोनी जी भी तो करती है,
1: वो तो करती है।
0: हाँ, और आप भी अच्छा कर रही है, अच्छा करिए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं और कामयाबी हो आपको, और आप बेहतर से बेहतर करें। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
10: जी नमस्ते।
11: नमस्ते,
10: हम पचपरा से बोलते हैं।
11: जी क्या हाल है?
10: ठीक तो है, अपना बताइए।
11: मेरा भी ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी?
10: अभी तो खाना वाना खा कर आराम कर रहे हैं, घर पे फोन लगा रहे हैं।
11: चलिए तब तो बढ़िया है। उधर धूप है कि नहीं?
10: जी
11: उधर मौसम कैसा है?
10: बहुत धूप निकला है, गर्मी बहुत है।
11: जी गर्मी तो है, इधर भी गर्मी बहुत है।
10: गर्मी से काम है कि ठंडा ठंडा
11: हुआ रहता है।
10: गाना सुना दी, शरीर लगता है कोको कोला।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: गाना सुना है?
1: गाना सुनाएंगे, एक बार नाम बता दें।
0: रामखेत
1: जी। कहाँ से?
0: गोपालगंज से।
1: अच्छा, क्या हाल है आपका?
0: ठीक है।
1: बताइए, क्या फरमाइश है आपकी?
0: गाना सुनना है।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: चिट्ठी आई है, चिट्ठी नहीं आई, वही गाना।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सुन रहे सब लोग करे।
1: चलिए, और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ, सब बढ़िया है।
1: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
3: और 90971660।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडो पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57 902।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
11: नमस्कार।
12: नमस्कार,
11: बढ़िया, अच्छा बताइए।
12: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
11: ठीक है, मौसम का हाल बताइए क्या है?
12: मौसम इधर बहुत गर्म है।
11: गर्मी तो इधर भी है बहुत। गाना सुनना है, सुना दीजिए।
12: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
11: धनंजय शर्मा का गाना है, एक नवजिया बैठ क्या जाने, ये दिल की बीमारी है।
12: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
11: सबसे पहले आपको और रेडियो सुनने वाला।
12: चलिए फिर गाना करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्रेम 94.4 FM में।
1: गाना हमने सुना है
0: जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दे एक बार अपना।
1: किशोर कुमार
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: महाराष्ट्र।
0: अच्छा, तो बताइए क्या हाल है आपका?
1: इधर हवा चल रही है, आवाज नहीं रुक रुक के आ रहा है।
0: अच्छा, मौसम उधर का कैसे हुआ है?
1: अभी इधर का मौसम ठीक है, नहीं है हवा बढ़ रहा है, इधर बिहार से अच्छा चल रहा है।
0: बताइए फरमाइश है आपकी।
1: शराबी वाला गाना सुना दीजिए, अंतर संख्या लोग कहते हैं हम शराबी।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: कुमार, रितेश कुमार, अभिषेक कुमार, उनको सुनवाना है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करें 87-894-18-744।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम इसमें।
16: सलाम अलैकुम।
17: वालेकुम अस्सलाम
16: जी, मुझे गाना सुनना है मैम।
17: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
16: मुझे गाना सुनना है अब लौट चले टाइटल।
17: और ये सॉन्ग किसको सुनाना चाहते हैं?
16: सबसे पहले आपको मासूम कौशर, जुनेद, कमरान भाई, इरफान भाई, नौसाद भाई, दीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, रुबीना जी, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
17: ओके, तो और सब कैसा है?
16: बढ़िया है, आप कैसे हैं?
17: मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं अभी?
16: अभी मैम काम कर रहे हैं।
17: अच्छा चलिए फिर बढ़िया है।
16: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
17: पता है
16: जी,
18: पहला दिन कर गुलाम।
17: चलिए गाना प्ले करते हो, सुनते रहे रेडियो 90.4 FM।
16: थैंक यू मैम,
17: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलमाई चॉइस में।
1: सर मैम
0: जी गाना सुनाएंगे, एक बार अपना नाम बता दें।
1: स्मृति शर्मा बोल रही हूँ वृंदावन से।
0: अच्छा क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, गर्मी से तो हाल एकदम खराबी चल रहा है अभी।
0: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है।
1: तो सब बताइए मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? खाना हो गया आपका?
1: हाँ खाना तो सुबह ही में कर गया, गर्मी से तो पानी से पेट भर जा रहा है, खाना तो खाने का मन ही नहीं कर रहा।
0: तो गर्मी में बच के रहिए, पानी पीते रहिए।
1: आप भी मैम थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: सॉन्ग सुनना था।
0: कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: ये सॉन्ग नहीं है जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, यही वाला सॉन्ग मैम सुना दीजिएगा। और डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी मम्मी को, आपको और मेरी सिस्टर है नैना शर्मा, सलोनी शर्मा और जितने भी रेडियो रिंगिंग के लिसनर है सबको।
0: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम सॉन्ग सुनाने के लिए।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99-393-65-930।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: अच्छा, भारतीय जी?
14: जी
13: नमस्कार।
14: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
13: ठीक है, और अपना सुनाइए।
14: मेरा भी बढ़िया है।
13: तो आपका आवाज ही सुनते हम
14: हाल है।
13: ठीक है, बीच में कहाँ गए हैं जी? बीच में आप कहाँ गुम हो गई थी?
14: यही कैसे, हम भी सोनी जी भी रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभी हम करते हैं।
13: नहीं
14: है, दोनों जन रिकॉर्ड करते हैं, कभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी वो करते हैं।
13: ठीक है, खाना पीना हो गया?
14: जी खाना पीना हो गया। आपका हो गया?
13: जी हम भी खा कर बगीचे में सोए हैं, फिर मिला रहे थे तो दीदी को भी बता रहा, फिर मैं प्रयास ही कर रहा हूँ कि लगेगा तो जरूर
14: लगेगा कि नहीं।
13: चलिए अच्छी बात है, आप कम आ रहे हैं, हम लोग की तरफ से आप लोग पूरा टीम से है।
14: तबियत ठीक है ना आपकी?
13: हाँ बिल्कुल, बेड़ी बेड़ नहीं है।
14: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे?
13: गाना सुना दीजिएगा, कल आया था एक बार, इसी हम सुने तो हम देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए आ जा रहे हो माजी तेरा राधा देख लिया ना फिल्म का है हमारे और उसमें हीरोइन कौन थी याद नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया गाना है सुरेश भास्कर का याद नहीं आ रहा था।
14: कौन किसी को डेडिकेटेड है?
13: हमारे सचिन बाबू हमारे जितने भी लोग स्वस्थ व्यायाम के लगे हैं सारे और सारे ठीक है। फिर आप आते रहिए।
14: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
13: पहचान लिए थे ना हम तो?
14: जी।
13: कौन बोल रहे थे?
14: लाल बहादुर। ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: अब मौसम कैसा है बिहार का?
0: बिहार का मौसम तो अभी बहुत गर्म है।
1: क्या अभी गर्मी पड़ रही है? अभी जून का महीना चल रहा है तो
0: जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अभी ये लास्ट गर्मी पड़ रही है
1: जी। घर पर ही है मैडम जी अभी तो।
0: आप कहाँ पे हैं?
1: कवासा से बोल रहे हैं, जिला गुना।
0: अच्छा, वैसे नाम क्या है आपका?
1: गोपाल।
0: अच्छा जी, तो और कैसा है?
1: बढ़िया है, अभी मैडम जी घर पर ही हैं सभी।
0: उधर का मौसम कैसा है?
1: मौसम और बदल भी हो रहा है अभी तो, ऐसा ही हो रहा है, धूप भी निकल रही है।
0: अच्छा, भोजन हो गया आपका?
1: हो गया भोजन तो।
0: चलिए बढ़िया है।
1: गाना सुनना है
0: जी?
1: गाना सुनना है।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का सुनना है, कुमार सानू लता मंगेशकर की आवाज में। जी बात,
0: कौन सा सॉन्ग?
1: वो है ना, तुझे देखा तुझे जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम जी वाला।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: डेडिकेटेड है ना, मांगीलाल धाकड़ जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, सुनील साहू जी हैं, मकसूद अनगढ़, इन्हीं के लिए है।
0: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले हैं
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो नमस्ते मैम।
12: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: जी मैडम,
12: क्या हाल है आपका?
11: ठीक है, अपना बताइए।
12: मेरा भी बढ़िया है।
11: खाना हो गया है?
12: जी खाना हो गया है। आपका हो गया?
11: हाँ हम भी खा लिए।
12: तो बताइए क्या हो रहा है अभी?
11: कुछ नहीं, आए हैं ऊपर शोरूम में, छत पे आए। ऊपर
12: धूप नहीं लग रहा है?
11: नहीं ऊपर नहीं है, अंदर है।
12: हजूम आ रहे हैं तो मौसम तो खराब है।
11: बहुत खराब है, बहुत धूप निकला है।
12: तो धूप से बच के रहिए, घर में रहिए, पानी
11: पीते रहिए। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है।
12: बताइए क्या फरमाई थे आपकी?
11: गाना नहीं है, छोड़ के न जाओ भैया, वही गाना।
12: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती हैं?
11: आपको और सॉन्ग लिख लो और सुनाना चाहते हैं।
12: ओके, एक बार नाम अपना बता दे।
11: प्रियंका जी, पुनः मुझसे
12: जी। ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे 90.4 FM।
11: ठीक है।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैं सुवीर कुल बोल रहा हूँ, कोरिजमा जिला देवघर झारखंड से।
0: क्या हाल है आपका?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं और आपके रेडियो रंजन के पूरी टीम कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, मेरे रेडियो रंजन के परिवार सारे अच्छे हैं। क्या हो रहा है अभी?
1: क्या हो रहा है, धूप बहुत ही है, घूमें बैठे हुए। आज ना दीजिए मैम, मदर का सिकंदर फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, और साथ ही तेरे बिना भी क्या जीना।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: जी आपको सुनाओ, आप सुनेंगे, हम सुनेंगे और जितने भी रेडियो रंजन के
0: ओके। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
10: नमस्कार।
11: नमस्कार,
10: आप कौन बोल रही हैं?
11: मैं भारती बोल रही हूँ।
10: जी जी, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ मुंबई से। बढ़िया है, अच्छा है, अपना सुनाइए।
11: मेरा भी ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी?
10: क्या डिप्टी में हूँ, डिप्टी चालू है अपना। आपसे पहला बार बात हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को।
11: जी, तो क्या करते हैं आप?
10: मेरा काम ड्राइविंग का है, मैं कंपनी में है।
11: बढ़िया है। भोजन हो गया आपका?
10: जी, सुबह नाश्ता हो गया है और शहर का लंच होगा 1 बजे।
11: बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी?
10: फरमाइश और सब मौसम का हाल चाल बताइए उधर गोपालगंज का।
11: गोपालगंज का मौसम तो बहुत गर्म है, बहुत गर्मी पड़ रही है।
10: अच्छा,
11: और उधर कैसा है?
10: इधर तो बारिश चालू हो गया है, मौसम ठंडा है, सुहाना मौसम है। हाँ,
11: बढ़िया है, उधर मौसम सुहाना है, तो चलिए आपके लिए ठीक है।
10: इधर से मैं भगवान से बोलता हूँ कि भाई उधर भी जाए, इधर गर्म। एक सुना दीजिए।
11: कौन सा?
10: आशिकी आ गई, हमें आशिकी आ गई, हरजीत सिंह की आवाज में है। यही वाला गाना सुनना है और डेडिकेट आपको भी रहेगा और जितने भी रिम झिम सुनने वाले लिस्टर है सभी को डेडिकेट रहेगा ये सब।
11: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिम झिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: थैंक यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारा सब खैरियत आपका।
1: जी मैम आपको गाना सुनना था, प्रेम पर चढ़ गया था।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: शीशे की उम्र प्यार का आधा पैसा लेकर टूटा जो दिन किसी का है रवि वाला।
0: ओके और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: बस मेरे साथ में पार्टनर आशीष सरकार उसी को।
0: ओके और सब बढ़िया है?
1: जी मैम बढ़िया है। मैं बहुत दिन बाद कॉल किया, सोचा देखता हूँ लगता है कि नहीं लगता, कल लग गया।
0: ये तो अच्छी बात है।
1: नहीं मिल पाना मैम काम से, आज थोड़ा सोचा ध्यान है क्या सोमवार है टाइम पे कॉल करके देखे। ये गाना कब तक आएगा?
0: ये गाना पूरी कोशिश रहेगी आज या कल बज जाएगा पूरा।
1: टाइम शाम के टाइम में 5 से 7
0: में। हाँ हाँ
1: जी मैम थैंक यू।
0: ओके चलिए गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी। रेवरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा छोटे वर्जा भार। रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुंचे के कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई। कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथे राव दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव टू ठावल जाओ सोटी बिरजा भार के।
1: अरे नए

0: सावरी रहे उ निकल के आके का कहतरी सती सावरो हरे
1: का
0: हरे सोगही कुली
1: का
0: अरे तनी के कुछ बुझात नहीं खेरे
1: का है दादा हमनी के तो तनी वनी नौजवान बनी है तो खेपात नहीं खे अरे हई बुढ़िया आइल बा एहू के नहीं के खेपात है दादा सुन तरु हो
0: ऐसा बात मत कहत हां
1: आई देख तरु आई देख अरे हमनी के तो तब से जोगी बाबा के फसोले रहनी हो तो
2: अच्छा
1: तो तनी ठीक रहल खेपा ले अरे हई बुढ़िया आइल है ये दादा यो चाहती है इनसे प्यार कोई
0: ना मन बोलो नी तनी के
1: ना ना
0: रे तनी के शर्म चाहि
1: कैसन शर्म है दादा
0: तनी के लाज चाहि
1: कैसन लाज
0: तनी के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहि
1: कैसन
0: पूछ सके से
1: काहे खाती
0: रे इहेनु हमनी के भगिना बिरजाभार हुवन
1: आही पारी सही है भगिना बिरजाभार हुवन
0: आ तनी के इनसे प्यार करता उ सन
1: अरे दादा
0: भाग समझ रे
1: भाग समझ
0: भाग
1: रे भाग रे भाग रे ये पर भगिना बिरजाभार हुवन रे दादा
2: भाग जल्दी भाग
3: अब हां बिरजाभार अपने मामी से का कहतरन
0: का कहतरन

0: अब देखा अब हमके भिक्षा दे दो कि हम जाए सूरजपुर के
1: ना मनब
0: ना
1: ना मनब
0: ना।
1: अरे अब तो हम पुरनिया हो गई बानी, अब से हमार बात मान के तू घरे वापस लौट के चल जेत तो सुंदर रह
0: ना। अब यहाँ से हम जेबे करब
1: भिक्षा लेबे करब
0: भिक्षा लेबे करब।
1: बाबू सुन लो, हम तारा के भिक्षा दे तानी लेकिन सूरजपुर जाए में बहुत से खटका बाटे।
0: अरे बड़ बड़ खटका

0: मामा के समझोले रही तू, मामा कसम ना धरोले रही ते, तई तहार भगड़ा कैसे बिर जब हार हम जाइते।
1: बाबू हमार, हमनी के 360 रानी बनी जनू, हाँ। सब जने ओकरा से हैरान बनी जा। तू ना मानता तो ल हई हम तारा के भिक्षा दे रहल बानी।
0: द जल्दी भिक्षा दे दो मामी।
1: है झोरी औरी हेने लेके आओ।
0: लाव द हाला। अब वहां बिरजा भार अपने मामी के हाथ से भिक्षा पा गईले और वहां से आगे के राय धले तड़न। अब देखी अब वहां से जा करके अब सुमिरा तने अपने गुरु के कि हे गुरु

0: का तू अपने मामी से भिक्षा ले लो लो?
1: हाँ अपने मामी लो से भिक्षा ले ले बानी। अब हमके बताए गुरु यहाँ से कहाँ जाए?
0: हम बताओ तनी, फिर तू ये ऐसा लवट के चल जा अपने घरे।
1: फिर घरे हम जाई?
0: हाँ।
1: ना गुरु, हम घरे ना जा सकीले गुरु, ना जा सकीले।
0: कहे हो
1: ऐसे? हमरा के कहे के मतलब ही, ए गुरु तू कहता है कि दक्षिण शहर में चल जा अपने माता सुनैना के लगे।
0: हाँ।
1: हम ना जाए गुरु, ऐसे ना जाए। जमुन माई हमरा के 9 महीना गर्भ के अंदर पल्ली, ओ माई के सूरज छोड़ के हम चलिए नी। अब फिर हम कैसे लौट के अपने नगर में जाए बे गुरु?
0: सुन लो, जब तू जेबा अपने माई के लगे, अपने महतारी से भिक्षा ले लेबो, तबे तहार जोग पूरा होई।
1: हे गुरु,
0: एकरे बीच में ना पूरा हो सके।
1: तू का कहतड़ा, एकरे बादे हमार जोग पूरा होई।
0: हाँ।
1: एकर मतलब हमरा अपने माई से भिक्षा लेवे के परी?
0: लेवे के परी।
1: अच्छा ये गुरु, लेकिन ओहिजू हमार ब्याही बा ये गुरु, हमरा के ना आवे दी, हमार धर्म टूट जाए ये गुरु। लेकिन खैर गुरु के बात मानल हमार जरूरी बा।
0: चेला,
1: हाँ।
0: जैसन समय आए वैसन तू करिया, हमके पुकार करिया, हम सामने जरूर आ जाए।
1: अच्छा हे गुरु।
0: हाँ चेला,
1: अब हम जाता नहीं अपने माई के दुआरी, तहार कहल हम कबूल ना टाल सकीले गुरु।
0: ठीक बात, तू जा।
1: जा रहल बानी, अब वहाँ जोगी गिरजा भार अपने माई के दुआरी कौने तरह से जा रहल बड़े। अरे रहिया तो धैले

0: कहत रहे कि ये तरह से जाए तो हो सके माई पहचान ली है। अब वहाँ से एगो खजली बजाओ तड़े या भजन गाओ तड़े कौने तरह से गाओ चल जा तड़े अपने माई के दुआरी पहुँचा तड़े
1: करो सुहागिनिया बहिन अरे चेत करो
0: अरे तहार

0: अब देखी पहुंच गेल बड़न बिरजा भार, एही तरह गाओ बजाओ अपने माई के दुआरी पहुंच गेल बड़न।
1: ऐसे हो कैसे
0: जाके का देखा तड़न कि अपने फुलवारी में कि लौड़ी खड़ा बिया, जब लौड़ी देखतिया तो कौने तरह से का कहतिया हो।
2: अरे बाप रे बाप, हे जोगी बाबा।
0: का
2: जोगी बाबा?
3: हाँ।
2: अरे राउर कहाँ घर बे जी?
3: घर से तरह का मतलब बा
2: रुआ? इतना हमरा निमन लागता नी,
3: लाख निरंजन लाख निरंजन,
2: इतना हमरा सुंदर लागता नी, इतना हमरा चिकन लागता नी, मन करता रुआ से आज हमार बियाह करे के। सीताराम जी मत कही हेने आई हमरा लोग के सूत के हमरा लोग मीठा राम मीठा राम कर।
0: लौनी तो पहचानत नहीं की लेकिन का कहतरी जोगी बाबा से, का कहतरी हो? अरे नयता उमरिया

0: जल्दी दौ अपने महारानी से कह दे कि ला के हमरा के भिक्षा दे दे।
1: ठीक बा,
0: हमरा से प्यार करे खातिर चलल बाड़ू,
1: हमरा हाथ से भिक्षा ना लेब,
0: तारा हाथ से भिक्षा ना ले। आबो जी जोगी बाबा, का कहत रहे लौड़ी से
1: हमरा देहिया में का भयो।
0: अरे नए

0: इच्छा ले भाव
1: जोगी बाबर वो ना मानो
0: ना मानो
2: ना
1: ना मानो हम जाई बोला के ले आई
2: ना तू जा आ महल से बुढ़िया मलकिन के बोला के ले आओ
1: ठीक बा हम जाता नहीं
0: आ हमरा का भिक्षा दियो जल्दी
1: ए बुढ़िया मलकिन
3: का है ए दादा
1: चली ना एगो दुअरवा पर जोगी बाबा आइल बने
3: जोगी बाबा
1: हाँ आ ऊ कह तड़े कि हम तोरा हाथ से भिक्षा ना ले हम जब भिक्षा ले तब बुढ़िया मालकिन जिन बाड़ी नू उन्हीं के हाथ से भिक्षा ले
3: अरे बाप रे बाप
1: चल के दे दे
3: चलो हम आओ तनी लेकिन इतना दिन हो गई हमरे बाबू मिर्जा भार के गईले आज तक केहू ना आई रला दुआरी पर आज कैसे हमरे दुआरी पर एक जने जोगी बाबा आ गए रला
1: बे
3: चला ये लौड़ी हम आओ तनी अब तो हमरे आंखी से लौकत नहीं है
1: जोगी फकीर लोग के केहू जाने ला
0: चल
1: कि कब आ जाइलो कब ना आइलो चली ना है दुई अपन है जौन है
0: गोजिया बा
1: आइ चाहे लबदिया बा दिन हमरा के लठिया दिन चली आई
4: अरे सुन बूता सुन

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक पूर्व IAS अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है, जो एक रिकॉर्ड है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है। उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को सराहना करता है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है।
4: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा

कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्र भारत के दीर्घकालीन प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की जीत है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में चल रही है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री चौधरी ने नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी।
1: बिहार में आज लगभग 1 करोड़ हमारे जो दिव्यांग जन है, विधवा बहने हैं और जिनको भी सभी तरह का पेंशन सरकार के द्वारा देने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक महीने के 10 तारीख को ये इंश्योर करना है कि हमारी जो बहने हैं, चाहे वृद्ध जन हो, विधवा बहने हो या दिव्यांग जन, सबको पेंशन हर हालत 10 तारीख को उनके खाते में दे देना है।
0: मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लोगों से शीघ्र आवेदन करने तथा आधार लिंक नहीं होने के कारण पेंशन से वंचित लाभुकों से जल्द आधार लिंक कराने की अपील की। राजस्व महाभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से कल से शिविर का आयोजन किया जाएगा। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि ये शिविर सभी हलका में 17 जून तक आयोजित होंगे।
2: बिहार के अंदर जो करीब 46 लाख लंबित आवेदन बचे हुए हैं और उसके लिए एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से लेकर 17 जून तक ये विशेष

0: अभियान राजस्व विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की स्कैनिंग, पोर्टल पर अपलोडिंग और निष्पादन का अभियान होगा और इस कार्य को अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बैठक में तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीसीसी नीति के तहत गूगल को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना में बिहार राज्य भंडार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पीसीडीओ पद पर चयनित 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वर्ष 1958 के बाद पहली बार निगम में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास 11,53,00,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई थी। इकाई ने इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के राजचक बहाउद्दीन ग्राम पंचायत के मुखिया सियाराम राय को 1,20,000 रुपए रिश्वत देते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुखिया शिकायतकर्ता शिक्षक से निलंबन समाप्त करने के एवज में घूस दे रहा था। इधर ब्यूरो की टीम ने गया जिले के पेलागंज थाना क्षेत्र से चौकीदार मनीष कुमार को 9,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चौकीदार एक केस में नाम हटवाने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गाछ में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत राज्य के 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान एवं वैशाली जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: अररिया नगर थाना क्षेत्र के कुसियार गांव के पास NH-57 पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड में कोसी नदी में एक नाव पलट गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 94,00,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में एक पूर्व IAS अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली समेत 14 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप तीसरा भाग में एकर अगला कहानी सुनी।
1: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही। कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 9857788291 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84/28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं, पैर छू के प्रणाम करता नहीं, चलता नहीं, अब फिर आये एगो नया एपिसोड के साथ, एगो नया कहानी के साथ, फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा, अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत। हंसत रही, मुस्कुरात रही, नमस्कार।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
3: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: सुनो दिल से।
9: पूछे जो कोई।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: तू जो है।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, का पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 9097160602।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज ही आए एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।
11: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
0: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
11: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
12: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
16: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
17: उत्तर बिहार का गौरव,
18: सारण प्रमंडल की शान,
17: गोपालगंज की धड़कन
18: और अपने भाषा की पहचान,
17: रेडियो रिद्म 90.4 FM।
18: सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
7: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
8: भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक शासनाधीन राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए NCB काडर उप प्रबंधक कुल पद 14 है। NCB काडर पदधारी प्रबंधक कुल पद 8, NCB काडर समूह प्रबंधक कुल पद 1, काडर कार्यालय सहायक कुल पद 1, NCB काडर पदधारी हिंदी सहायक 1 पद और NCB काडर पदधारी प्रशासन सहायक 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ncbindia.com। ब्रिक ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वरिष्ठ प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत शर्तों, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देख सकते हैं आप वेबसाइट www.thstis.res.in। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अल्पकालिक संविदा के आधार पर एक सलाहकार IT की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र, नियुक्ति के लिए शर्तें और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया देखी जा सकती है इस वेबसाइट पर fci.gov.in। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, रोजगार समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर है। ये जानकारी 30 मई से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार अंक पर आधारित है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.indianrailways.gov.in। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक जल संभर विकास, निदेशक जल प्रबंधन, निदेशक वानिकी, STA जल प्रबंधन, STA वानिकी, STA जल संभर विकास या सामाजिक विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र, एसटीए कृषि एवं बागवानी तथा एसटीए पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आवेदन भेजे जा सकते हैं इस पते पर, अनुभाग अधिकारी राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, 8वीं मंजिल प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली 110012। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nraa.org।

0: यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
1: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
0: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
1: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
0: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
1: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
0: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
0: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
1: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया, कहा विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
8: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
7: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
8: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
8: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
7: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
8: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
7: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
9: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
7: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
10: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
7: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
11: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
12: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
11: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास। यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
13: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
14: क्यों, क्या हुआ है?
13: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
14: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
13: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
15: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
16: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
17: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन राशि का हुआ हस्तांतरण, दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत, जेल में कैदी की मौत पर राजनीतिक सरगर्मी तेज, रेप कांड के एक पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री, और मारपीट में हुई एक की मौत, दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मई महीने के पेंशन की राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर की। बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले के भी लगभग 2,64,733 लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि भेज दी गई। इससे वृद्धजन, विधवा महिला, दिव्यांगजन एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो गई। आज जिला पदाधिकारी ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के प्रावधानों के आलोक में जिले में संचालित एकमात्र देखरेख संस्थान विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान जो हजियापुर में है, उसका डीएम ने निरीक्षण किया। संस्थान के कर्मियों के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए उसमें आवासित कुल 4 बच्चों के बेहतर देखभाल और समुचित पोषण के नियमित अनुश्रवण को करने के लिए निर्देशित किया तथा सभी कर्मचारियों को इस पुनीत कार्य में अधिक तत्परता से कार्य करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही इसमें आवासित दिव्यांग बालक के नियमित स्वास्थ्य जांच एवं उसके विशेष देखभाल फिजियोथेरेपी के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिया गया। दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की जान चली गई। एक मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुटी बाजार तारा नरहवा का है, जहां एक सड़क हादसे में बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान बंजरिया गांव निवासी महेंद्र राम के रूप में हुई है। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि मृतक दवा लेने के लिए घर से निकले थे, तभी रास्ते में सड़क हादसा हो गया जिससे साइकिल सवार महेंद्र राम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोई तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक पर 3 युवक सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना में खून से लथपथ महेंद्र राम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो वहीं कुछ लोगों ने घटना के बाद भाग रहे 3 युवकों को पकड़ लिया। हादसे के बाद बाइक सवार तीनों युवक मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अब इस मामले में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से पूछताछ करते हुए इसमें विधिक कार्रवाई कर रही है। एक दूसरा हादसा सिरीपुर थाना क्षेत्र के बलभद्र परसा गांव का बताया जा रहा है, जहां पोखर में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पंकज कुमार सिंह पिता दिनेश सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक नहाने के लिए पोखर में गया था, गांव के कुछ दोस्तों के साथ करीब आधा किलोमीटर दूर पोखर में नहा रहा था, इसी दौरान गहरे पानी में चला गया। मौजूद दोस्तों ने बचाने की कोशिश की लेकिन बचाया नहीं जा सका और डूबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। बरौली थाना क्षेत्र के बलहा बिशुनपुरा गांव के रहने वाले इरशाद आलम को 2 जून को पुलिस ने डबल पासपोर्ट बनवाने के मामले में गिरफ्तार किया था। अब बताया जा रहा है कि जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां इनकी मौत हो गई। एक हफ्तों के अंदर ही कैदी की मौत को लेकर जेल प्रशासन और पुलिस पर तरह तरह के सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिस के तरफ से खबर मिलने तक कोई बयान सामने नहीं आया था, परंतु इसमें राजनीतिक जरूर गर्मा गई। इरशाद आलम की मौत पर MIM के नेता अनस सलाम ने भी प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ने भी जिला प्रशासन और खासकर बरौली थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। विजयपुर में एक युवती से हुए रेप कांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। मंत्री ने परिवार को आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और आरोपियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी उन्होंने बातचीत करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर बरौली थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बकरी के बच्चे को मोटरसाइकिल से धक्का लग जाने के कारण रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार के फर्द बयान के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज की है। इधर हथुआ के सोहागपुर के अनीस कुमार की हत्याकांड को लेकर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। प्रेम प्रसंग में अनीस कुमार के हत्या की बात बताई जा रही है। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इस कांड में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में दूसरे पक्ष ने भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, परंतु एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने जहां शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा, तो इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त अरविंद मांझी पिता मोहन मांझी साकिन फतेहपुर थाना बरौली को गिरफ्तार किया। साथ ही दूसरे पक्ष के आवेदन पर अभियुक्त गोलू कुमार पिता बच्चा राम साकिन फतेहपुर थाना बरौली को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया। साथ ही शेष नामजद एवं अन्य संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी दीपक कुमार राम है, पिता भरत राम, ये भी सोहागपुर का ही रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के बाद इसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना के समय इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने जब्त किया है और आरोपी के कपड़े भी जब्त किए गए हैं। इस संदर्भ में हथुआ के SDPO से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा
18: 6/2026 को हथुआ थाना अंतर्गत सुहागपुर गांव के अनीस कुमार शाम में 6:30 बजे साइकिल से निकले थे घर से, देर रात तक वो वापस नहीं आए। देर रात तक परिजन के द्वारा खोजबीन किया गया और दिनांक 8 तारीख को थाना में इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष हथुआ के द्वारा FIR दर्ज करके एक टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा खोजबीन प्रारंभ किया गया। लगभग 12 बजे इसकी लाश बंगड़ा चवड़ से मिली है। FSL टीम को बुलाया गया एवं अन्य वरीय पदाधिकारी भी आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों के आधार पर घटना में शामिल अभियुक्त दीपक राम को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, उसके कपड़े एवं मृतक का मोबाइल जब्त किया गया है।
19: सर, हत्या का कारण क्या?
18: हत्या का कारण प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है।
19: सर, मोबाइल पर एक मैसेज आया था, उसका क्या?
18: हत्यारा के द्वारा ही मोबाइल पर मैसेज किया गया था और उसकी निशानदेही पे ही मोबाइल बरामद किया गया है।
19: सर, कितने लोग शामिल थे इस हत्या
18: में? घटना में एक ही अभियुक्त के शामिल होने की बात सामने आई है।
17: टीबी मुक्त बिहार के लिए जन भागीदारी और सामाजिक जागरूकता जरूरी है। इसको लेकर सुदृढ़ जांच एवं उपचार व्यवस्था से ही टीबी मुक्त बिहार की ओर लगातार सरकार बढ़ रही है। पटना के अधिवेशन भवन में बुधवार को राज्य स्तरीय टीबी मुक्त बिहार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन ने किया। राज्यपाल के आगमन पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पौधा पात्र भेंट कर उनका स्वागत किया। टीबी उन्मूलन के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों और उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। इधर भोरे थाना क्षेत्र में 2.5 साल पहले खेत में अंडा दिलाने के बहाने ले जाकर एक मासूम से दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में अदालत ने पीड़ित के सगे चाचा को दोषी करार दिया है। आरोपी जितेंद्र शाह को अदालत ने दोषी करार देते हुए 23 जून को इस पर सजा सुनाने का ऐलान किया है। 10 जनवरी 2024 को भोरे थाना क्षेत्र में एक मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था। सिधवलिया की अंचलाधिकारी प्रीति लता की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। अदालत ने जिला पदाधिकारी से इन पर हुई कार्रवाई के संदर्भ में रिपोर्ट मांगा है। हालांकि रिपोर्ट आने तक और कार्रवाई पूरी नहीं होने तक इनकी गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा दिया है। बताते चले कि अंचलाधिकारी का कुख्यात रंजन यादव के साथ फोन पर बात करते हुए ऑडियो वायरल हुआ था और इसी आधार पर जिला पदाधिकारी ने इन्हें सस्पेंड करते हुए इन पर FIR भी दर्ज करवाया था। इधर प्रशिक्षु DSP सह मीरगंज के थाना अध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंडेरा गांव में छापेमारी की और हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त सद्दाम खान तथा सिवान के बड़हरिया थाने के सियारीकरण गांव के रामा शंकर शाह को गिरफ्तार किया है। दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने संगठन विस्तार अभियान के तहत आज कई क्षेत्रों में पंचायतों और प्रखंड कमेटी तथा नगर कमेटी में पार्टी के समर्पित अनुशासित और पार्टी के संविधान और पार्टी के नेता नीतीश कुमार में आस्था विश्वास रखने वाले कार्यकर्ताओं को जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत अध्यक्षों और वार्ड अध्यक्षों के चयन में भी जातीय समीकरण का ख्याल रखने और जुझारू साथियों को मनोनीत करने पर जोर दिया गया। उचका गांव पुलिस ने भी एक हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी वासुदेव महतो को गिरफ्तार किया। यह दही भत्ता के रामचंद्र महतो का पुत्र बताया जा रहा है। जिलाधिकारी ने आंतरिक संसाधन बढ़ाने को लेकर एक खास बैठक की, जिसमें उन्होंने राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए 2026-27 के लक्ष्य के अनुरूप राजस्व बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। निबंधन, वाणिज्य कर, खनन और परिवहन विभाग को भी विशेष अभियान चलाकर सरकारी राजस्व प्राप्ति बढ़ाने पर जोर देने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आज लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। नगर थाना की पुलिस ने 18 लीटर देशी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी जितेंद्र यादव, पिता जानकी यादव जो जादवपुर के नवादा का रहने वाला है, इसको सरिया वार्ड नंबर 1 से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसका नाम चुमन कुमार है। यह सुरेश चौरसिया का पुत्र बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन राशि का हुआ हस्तांतरण। दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत। जेल में कैदी की मौत पर राजनीतिक सरगर्मी तेज। रेप कांड के एक पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री। और मारपीट में हुई एक की मौत, दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
20: ठक ठक।
21: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा, मिला ही नहीं
21: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
21: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
22: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
23: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
24: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
23: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
25: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
26: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
27: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
28: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: Excuse me, boss. You have a text message.

0: Excuse me, boss. You have a text message.
1: हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू, सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो हर रोज़ की तरह पुराने गाने की फरमाइश करना है, और जो भी सुरतगढ़ नए गाने की फरमाइश करेंगे उनकी फरमाइश को पूरी नहीं की जाएगी। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 7277165 पे। पहला मैसेज लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, पवन सिंह का भक्ति सॉन्ग, माय नेम इज दीपक एंड जेलर। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है, और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आप काफ़ी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इस मैसेज को करती हैं अफसाना खातों फ्रॉम फतेह से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सुनो भैया कैसे हैं, मैं स्वीटी शर्मा वृंदावन से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश। आगे मैसेज लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से जुड़े हुए हैं, और इनके तरफ से भी गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, और बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अब गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पहले गाने के फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में दीपक एंड जेलर जी की तरफ से भक्ति, तो सुनते हैं और इंजॉय करते हैं।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने का फरमाइश करना है। और आज हम फिर से आप सभी के बीच एक सुझाव साझा करेंगे सेहत सही लाभ कही के अंतर्गत। और आज हम जानेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में, और डिहाइड्रेशन से क्या होता है। डिहाइड्रेशन वह स्थिति है जब शरीर से पानी और आवश्यक लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। यह गर्मी के मौसम में अधिक पसीना आने, दस्त, उल्टी या पर्याप्त पानी ना पीने के कारण होता है। कारण यह है, अत्यधिक पसीना आना, कम पानी पीना, दस्त और उल्टी होना, तेज बुखार, लंबे समय तक धूप में रहना, ये सारे कारण है। और लक्षण, अत्यधिक प्यास लगना, मुंह और गला सूखना, कमजोरी और थकान महसूस करना, चक्कर आना, सिर दर्द, पेशाब कम आना या गहरे पीले रंग का होना, गंभीर स्थिति में बेहोशी भी हो सकती है। और इसके होने के बाद उपचार है, रोगी को आराम करने दें और ठंडी जगह पर रखें, बार बार पानी पिलाएं और ORS का घोल दें ताकि पानी और लवणों की कमी पूरी हो सके। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का रस दें। दस्त या उल्टी अधिक होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और गंभीर स्थिति में अस्पताल में नर्सों के माध्यम से तरल पदार्थ आईवी फूड्स दिए जाते हैं। और इसके होने से पहले के बचाव है, प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, गर्मी में बाहर निकलते समय पानी साथ रखे, ताज़े फल और तरल पदार्थ का सेवन करें, अत्यधिक धूप और गर्मी से बचें, स्वच्छ भोजन और पानी का उपयोग करें। ये सारे इसके लक्षण और उपाय हैं। तो इसे कहीं भी आप सभी के बीच परिवार में या आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को हो तो इसका देखभाल किसी को कर रहे हैं तो अच्छे से बताएं और डॉक्टर के पास ले जाएं, या आप जानते हैं उतना उसको मदद करें। ये रेडियो रिमझिम हर रोज़ सेहत से ही लाभ कही के अंतर्गत आप सभी के बीच छोटा छोटा सुझाव साझा कर रहा है। तो आप लोग इसको सुने और अपने जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम में आगे कई मैसेज भी पहुंचे हुए हैं। अगली मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है और सबकी मैसेज तो देखना ही मेरा कार्य है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर हम टाइम से मैसेज किए थे, तो बिल्कुल आपकी मैसेज हम शामिल करेंगे। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले शफरोज अली गोपालगंज से हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुनो भैया, मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से और आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। अगर फरमाइश करूं तो मेरा गाना बच जाएगा कि नहीं? जय माता दी। यदि आपकी फरमाइश पहुंचती है तो बजाने की कोशिश रहेगा। हाँ, आप जब फरमाइश करें तो एक ही बार सप्ताह में गाने की फरमाइश करें, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और उनकी फरमाइश जो छूट जाते हैं उन पूरी करने की कोशिश रहता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि

और इस गाने की फरमाइश करती हैं अफसाना खातून फ्रॉम फतह से, और गाने का बोल देती है ना ना करके प्यार है मैं कर गई। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

0: for more entertainment.
1: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
6: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
7: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
9: अरार मोड़, SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
7: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
9: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
7: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
9: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
7: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
9: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
7: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं और आगे गाने के फरमाइश पहले हम बता दें पूरी करेंगे श्वेती शर्मा की और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है कुमार सानू की आवाज़ में ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मारे सांवरे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि सर हमको सुना है जल्दी सुनाइए और इस मैसेज को करते हैं सफरो जल्दी जी तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले फिर आपके गाने हम सुना देंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय कमलेश कुमार मुझे गाना सुनना है फिल्म फूल और कांटे का, तो चलिए आपकी फरमाइश भी हम पूरी करेंगे और कौन से गाने सुनना है ये भी तो बता दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू भाई मेरे मैसेज नहीं पहुंचा है क्या? मैसेज पहुंचा हुआ था लेकिन आपकी मैसेज हमने देखा काफ़ी पहले पहुंचा हुआ था। आगे मैसेज इनके तरफ से लिखा गया है कि हुई उनकी आँख नम तो हम पुकारे गए, जख्म हमारे दिल के फिर से उभारे गए, एक दफ़ा फिर से उन पर भरोसा किया, फिर से उनके ही हाथों से हम मारे गए। सुनो भाई नाना करते प्यार हो गई सुपर सॉन्ग। दिलीप राम जी मैसेज करते हैं शिवहरवा बिहार से, तो आप बन रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश है आपकी फरमाइश सॉरी आपकी भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आगे कहते हैं कि चाहा ना उसने मुझे बस देखता रहा, मेरी ज़िंदगी से वो इस तरह खेलता रहा, ना उतरा कभी मेरी ज़िंदगी की झील में, बस किनारे पर बैठ पत्थर फेंकता रहा। शबाना जी की बेस्ट सॉन्ग, दिलीप राम जी मैसेज करते हैं, तो चलिए आप की सारी मैसेज हमने शामिल कर दिए हैं और आगे बढ़े। यहाँ पे आगे कई मैसेज लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग सुना दीजिए, उस लड़की पे दिल आया जिसने मुझे सताया। ओ शिव सागर जी, तो बिल्कुल कोशिश है आपकी फरमाइश हम प्ले कर दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया कि सुनो भैया मेरा सॉन्ग, तो बिल्कुल आप ही के गाने हम प्ले करने वाले हैं स्वीटी शर्मा जी, और चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

94.4 FM पे इस गाने को सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे फिर से, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सोनम भैया, आपको धन्यवाद है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, तुमसे मिलने को दिल करता है, और इस मैसेज को करते हैं कमलेश कुमार जी। तो बिल्कुल दिल करता है तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर आंख पे पानी मार के अपने गाने का इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर दे रहे हैं। और आगे कुछ मैसेज भी पहुंचे हुए, तो फिर मैसेज देखने के बाद से गाने हम प्ले करेंगे। और कहते हैं गाने के फरमाइश से आदमी खिलौना है, अलका याग्निक की आवाज़ में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, एक एक करके सबकी फरमाइश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल, और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम जी, और आप सभी श्रोतागढ़ से कह रहे हैं, अपील है आप सभी से कि आप लोग इस कार्यक्रम में गाने सुनना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, ना कि फ़ोन करें। फ़ोन करते हैं आप लोग तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होती है कार्यक्रम करने में, और हम लोग जब भी कार्यक्रम कोई भी चलाते हैं तो उसका एक नियम होता है कि आप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या आप आवाज़ देना चाहते हैं तो आवाज़ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हर कार्यक्रम के अलग अलग नियम है, जुड़ने के लिए तरीका है। तो आप लोग जैसे कार्यक्रम चले, जिस समय चले, उस माध्यम से आप लोग जुड़े और अपने पसंद के गाने सुने। फिलहाल अभी हमारे पास मैसेज तो कई हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं, तो आप लोग फ़ोन ना करें, आप सभी से विनती है। आगे मैसेज को रोकते हैं और गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं सफरोज अली जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी, आदमी खिलौना है।

104 FM पे बने हैं आप सब और कार्यक्रम SMS फरमाइश के साथ अभी गाने सुन रहे हैं आदमी खिलौना। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मैं आधी नींद में गाने सुन रहा हूँ लेकिन आपको पूरा थैंक्स। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रामचंद्र सुनने के लिए। और इस मैसेज को करते हैं शफरो जल्ली जी आगे गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से किए हुए हैं और गाने की फरमाइश करते हैं कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, ओल्ड सॉन्ग है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी। यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि प्रणाम भाई कैसे हैं, ठीक है सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है सुपर सॉन्ग बिल्कुल बढ़िया है और आप सभी के बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में सविता चौहान। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हेलो हाय सर जी मुझे भी गाना सुनना है तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और रही बात गाने की फरमाइश की तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है, बहुत कम समय बचा हुआ है मेरे पास। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.
1: रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे स्पैनिश गीत को सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। आगे मिसेस पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश शांति साथ कई मिसेस और आगे मिसेस पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल दीजिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। रोशनी कुमारी मानिकपुर से बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि मेरा गाना नहीं बजेगा क्या सर? बिल्कुल बजेगा। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले कर देते हैं। कमलेश जी इस मैसेज को करते हैं, तुमसे मिलने को दिल करता है, फूल और कांटे मूवी से। सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

टेडर एमसीएम 94 एफएम पे गाने एंजॉय कर रहे थे, कमाल के शाम तुमसे मिलने को दिल करता है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है शिव सागर दीवाना जी की तरफ से, गाने के फरमाइश किया गया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। तो चलिए, जब दिल आ ही गया है तो सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। फिलहाल आगे देखे तो मैसेज कई हैं और समय जो है समाप्ति के पास पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम। तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं, अंतिम गाने आपके गाने प्ले करते हुए। आप सब सुनते रहे रेडियो रिमझिम 94 एफएम, जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी जीएनएसएस जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिनचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
4: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways said the audit will cover all critical safety infrastructure including station buildings, electrical installations, air conditioning and ventilation systems, emergency exits and firefighting equipment. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open Tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo, 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. Sindhu's pre-quarter-final match will be played against compatriot and world number 39, Isharani Barua. And that is the end of this news bulletin.
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमजिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमजिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमजिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, रोती हुई आंखों में भी इंतजार होता है, न चाहते हुए भी किसी से प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम बहुत सपने जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार।

0: डीजे राहुल मानिकपुर।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: मैम, हम गोल्डन तलाक इंडिया से बोल रहे हैं
1: जी। क्या हाल है आपका?
2: बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है अभी?
2: बस काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, सब बढ़िया है। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है।
1: मौसम तो बहुत गर्म है, धूप बहुत ज्यादा तेज निकल रहा है।
2: धूप बहुत ज्यादा निकल है और हवा भी नहीं चल रहा है ना, तो बहुत गर्म है। हमको एक गाना सुनना था।
1: बताइए कौन सा सॉन्ग?
2: नमक लाल फिल्म का वो गाना है, पग घुंघरू बांधनी नाची थी। ये गाना बजा दीजिएगा। और ये गाना मैं जितने रेडियो रंजन सुनने वाले होता है सबको सुनवाना चाहता हूँ, जो मेरे दुकान पे काम करते हैं और सबको सुनवाना चाहता हूँ।
1: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी योगेश जांगले भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
1: क्या हाल है आपका?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: तबीयत ठीक है?
0: एकदम बढ़िया है।
1: बढ़िया। और मौसम बताइए उधर का, आज मौसम कैसा है?
0: मौसम धूप है, गर्मी है, अभी बारिश का इंतजार है।
1: बारिश तो पता नहीं कब होगा।
0: जी
1: तो और सब कब ठीक है ना?
0: और बाकी सब ठीक है।
1: जी चलिए बताइए क्या फरमाइश है आप?
0: फिल्म है सच्चा झूठा गीत के बोल है, यूं ही आती हो तुम ख्याल।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: कुछ मित्र है, शीतल गोयल जी, लोकेन्द्र वर्मा जी, दिलीप आहूजा जी, रोशन दिवंगत।
1: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे।
0: धन्यवाद
1: रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
3: The phone ring, they touch the head, don't get the
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: थैंक यू और आपको नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
5: हाँ जी अनिल जी, क्या हाल है आपका?
6: बस बढ़िया है, अपना बताइए।
5: मेरा भी बढ़िया है।
6: तब मौसम कैसा है?
5: इधर का मौसम अभी बहुत गर्म है।
6: हाँ, इधर भी वही हाल है।
5: तो आपकी तबीयत कैसी है?
6: तबीयत ठीक है, अच्छा है, और थोड़ा सा सावधानी से तो रहना ही पड़ेगा इस धूप में।
5: तो सब घर परिवार में बढ़िया है?
6: सभी लोग ठीक हैं।
5: चलिए अच्छी बात है
6: जी।
5: खाना हो गया आपका?
6: हाँ, खाना वाना खा के आए हुए हैं काम पे।
5: बताइए आज कौन सी फरमाइश है आपकी?
6: आज सोच रहे हैं भोजपुरी गाना सुनने का, क्योंकि काफी दिन से सिर्फ हिंदी गाने ही फरमाइश किए हुए हैं।
5: तो बता दीजिए कौन सा भोजपुरी सॉन्ग सुनेंगे?
6: एक गीत है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मूवी से, भोजपुरी मूवी है, उसी का गाना है मुस्की मार के जे बोले ला करे जो, ये वाला।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
6: सभी लोगों को और जितने लोग सुन रहे हैं बाकी।
5: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू मैम।

0: मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द है निगाहे जमाने की, खुद को बना इस कदर काबिल, खुद को बना इस कदर काबिल, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: मैं कमाल रफीद विलेज चौकड़ी सुल्तान।
1: जी, क्या हाल है आपका?
0: मेरा हाल ठीक है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है,
0: सब बढ़िया है।
1: बढ़िया है। तो क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ नहीं, बस आपको कॉल लगा रहा था। मैं बोला कॉल लगाऊं, आज तो मंडे है, हेलो माय चॉइस का रिकॉर्डिंग होगा।
1: जी,
0: टैक्सी लगाया तो लग भी गया, और नाश्ता उस्ता हुआ?
1: मेरा हो गया, आपका हो गया?
0: हाँ, मेरा तो हो गया है नाश्ता, तो मुझे भी 1 बजे खाना होगा। गर्मी तो इतना गिर रहा है, क्या बोला जाए गर्मी को।
1: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है।
0: हाँ, ज्यादा ही बढ़ गया है। तो मुझे इस गर्मी में नींबू पानी ज्यादा लिया करे, और इस गर्मी में अगर कोई काम ना हो तो बाहर जाना ही बेकार है।
1: ये तो बात,
0: बहुत गर्मी है। और अभी हरा सब्जी खाए, तेल मसाला कम डाले, ये सब अच्छा रहे। ज्यादा खीरा हुआ, तरबूज हुआ, ये सब मैंने ठंडा चीज। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज बताना कोई बुराई थोड़ी है,
1: नहीं
0: बताना ही चाहिए, जरूरी। और घर पर उसका ठीक है, वो आज सुना दी।
1: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
0: वो सॉन्ग सुनना है, मूवी है कहो ना प्यार, उसने का गाना है प्यार के तस्ती में लहरों के मसले।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सबसे पहले आपको, आयशा, शबनम सिद्दीकी, सबीना, हेना, हाजरा, तरी, जहां, रानी हरकुआ, निशा भारती, निशा सुकुनुआ, अहमद अली, दिलीप रांत, मीर आलम, इरफानी, सजीर आलम अंसारी, आजाद अंसारी, सऊदी, गुलाम हुसैन, और जितने लोग सुन रहे हैं, हाँ, भास्कर भाई, बर्जू भाई, उत्तम सोनी, दिवेंदर भाई, मुकेश भाई, उमा शंकर भाई, तो सभी को साथ सुना दीजिए वो गाना।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके हमें, अब बहुत अच्छा है मैं चॉइस कर रही हूँ, आपको अच्छा आइडिया हो गया है। और रोनी जी भी तो करती है,
1: वो तो करते ही है।
0: हाँ, और आप भी अच्छा कर रही है, अच्छा करिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और कामयाबी हो आपको, और आप बेहतर से बेहतर करें। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: जी नमस्ते।
6: नमस्ते,
5: हम पचपरा से बोलते हैं।
6: जी क्या हाल है?
5: ठीक तो है, अपना बताइए।
6: मेरा भी ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी?
5: अभी तो खाना वाना खा के आराम कर रहे हैं, घर पे फोन लगा रहे हैं।
6: चलिए तब तो बढ़िया है। उधर धूप है कि नहीं?
5: जी
6: उधर मौसम कैसा है?
5: बहुत धूप निकला है, गर्मी बहुत है।
6: जी गर्मी तो है, इधर भी गर्मी बहुत है।
5: गर्मी से काम है कि ठंडा ठंडा बा
6: रहता है।
5: गाना सुना दी सारी लगता है कोको कोला।
6: किसी को सुनाना भी है सॉन्ग?
5: सुनाए बाबू खाने लगाजी पसंद के मुझे उनको बोर बड़ा जोड़ा था, ऐसे उनका तो पिया दिया जरूरी था कोको कोला जी बोरवा जोड़ल बोल हो जाओ। सुनत हो तो भाई सुन ले जो कोको कोला क्यों भेजा था पिए के।
6: जरूर सुनाएंगे
5: जी।
6: और सब बढ़िया है ना आपका?
5: हाँ हाँ सब बढ़िया है। पछवाड़ा से बोला जी बोलता नहीं
6: बताए
5: जी। अब ऐसे कहे नमो बता लिया जरूर भाई पछवाड़ा नाम धरत पर समझ जा।
6: हाँ
5: हाँ कब आप सब अच्छा?
6: हाँ हमारा ठीक बा, अपन बताए
5: सब बढ़िया बा। चलिए ठीक बा, नमस्कार।
6: नमस्कार, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
5: जी।
6: नमस्कार।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: गाना सुना है?
1: गाना सुनाएंगे, एक बार नाम बता दें।
0: रामखेत
1: जी। कहाँ से?
0: गोपालगंज से।
1: अच्छा, क्या हाल है आपका?
0: ठीक है।
1: बताइए, क्या फरमाइश है आपकी?
0: गाना सुनना है।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: चिट्ठी आई है, चिट्ठी नहीं आई है, वही गाना।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: जितना आदमी सुन रहे हैं सब लोग करे।
1: चलिए, और सब बढ़िया है ना?
0: हाँ, सब बढ़िया है।
1: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो।

0: पानी के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार,
5: बढ़िया सब बताइए।
6: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
5: ठीक है, मौसम का हाल बताइए क्या।
6: मौसम इधर बहुत गर्म है।
5: गर्मी तो इधर भी है बहुत।

0: और
1: गाना गाना सुनना है, सुना दीजिए।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है।
1: और धनंजय शर्मा का गाना है एक नवजिया बैठ क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: सबसे पहले आपको और रेडियो सुनने वाला।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आज नहीं सुखरुप से आ रहा है।
1: अच्छा, मौसम उधर का कैसे हुआ है?
0: अभी इधर का मौसम ठीक है, नहीं है हवा बह रहा है इधर, बिहार से अच्छा चल रहा है इधर।
1: बताइए फरमाइश है आपकी।
0: शराबी वाला गाना सुना दीजिए, अमिताभ बच्चन का, लोग कहते हैं हम मैं शराबी।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: कुमार, रितेश कुमार, अभिषेक कुमार, उनको सुनवाना है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम में।
1: सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, मुझे गाना सुनना है मैम।
2: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है?
1: मुझे गाना सुनना है अब लौट के लटा चल।
2: और ये सॉन्ग किसको सुनाना चाहते हैं?
1: सबसे पहले आपको मासूम कौशर जी ने, कमरान भाई, इरफान भाई, नौसाद भाई, दीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, रुबीना जी, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
2: ओके, तो और सब कैसा है?
1: बढ़िया है, आप कैसी हैं?
2: मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं अभी?
1: अभी मैम काम कर रहे हैं।
2: अच्छा, चलिए फिर बढ़िया है।
1: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
2: पता है
1: जी,
2: गुलाम करते हो, सुनते रहे रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम,
2: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलमाइन चॉइस में।
1: सर मैम
0: जी गाना सुनाएंगे, एक बार अपना नाम बता दें।
1: मैं स्मृति शर्मा बोल रही हूँ वृंदावन से।
0: अच्छा क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, गर्मी से तो हाल एकदम खराबी चल रहा है अभी।
0: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है। तो
1: सब बताइए मैम आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? खाना हो गया आपका?
1: हाँ खाना तो सुबह ही निकल गया, गर्मी से तो पानी से पेट भर जा रहा है, खाना तो खाने का मन ही नहीं कर रहा।
0: तो गर्मी में बच के रहिए, पानी पीते रहिए।
1: आप भी मैम थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा।
0: जी जी बिल्कुल बताइए।
1: सॉन्ग सुनना था।
0: कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: ये सॉन्ग नहीं है जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, यही वाला सॉन्ग मैम सुना दीजिएगा। और डेडिकेट करना चाहती अपनी मम्मी को, आपको और मेरी सिस्टर है नैना शर्मा, सलोनी शर्मा और जितने भी रेडियो रिंगिंग के लिसनर है सबको।
0: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें रेडियो रिंगिंग 9.4 FM।
1: थैंक यू मैम सॉन्ग सुनाने के लिए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone can be much dear, to get it.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: अच्छा, भारतीय जी?
6: जी
5: नमस्कार।
6: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
5: ठीक है, और अपना सुनाइए।
6: मेरा भी बढ़िया है।
5: तो आपका आवाज ही सुनकर
6: ठीक
5: है। बीच में कहाँ गए हैं? बीच में आप कहाँ घूम गए थे?
6: यहीं पे थे। हम भी सोनी जी भी रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभी हम करते हैं।
5: सीट
6: नहीं है, दोनों जन रिकॉर्ड करते हैं। कभी मैं रिकॉर्ड कर लेती, कभी वो करते हैं।
5: सब ठीक है। खाना पीना हो गया?
6: जी खाना पीना हो गया। आपका हो गया?
5: जी हम भी खा कर बगीचे में सोया है, फिर मिला रहे थे तो दीदी को भी बता रहा। फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लगेगा तो जरूर है।
6: लगेगा कि नहीं?
5: चलिए अच्छी बात है, आप कम ना रहे हम लोग के तरफ से। आप लोग पूरा टीम के है की
6: तबियत ठीक है ना आपकी?
5: हाँ बिल्कुल, बेड़ी बेड नहीं है।
6: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे?
5: गाना दीजिएगा, कल आया था एक बार, इसी में हम सुने। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जा रही हूँ माँ जी तेरा राधा देख लिया। ना फिल्म का है हमारे, और उसमें हीरोइन कौन थी याद नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया गाना है, सुरेश डॉक्टर का याद नहीं आ रहा था।
6: कौन किसी को डेडिकेटेड है?
5: हमारे सचिन बाबू, हमारे जितने भी लोग स्वस्थ ज्ञान से लगे हैं सारे। ठीक है, फिर आप आते रहिए,
6: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
5: पहचान लिए थे ना हमको?
6: जी।
5: कौन बोल रहे थे?
6: लाल बहादुर। ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: अब मौसम कैसा है बिहार का?
0: बिहार का मौसम तो अभी बहुत गर्म है।
1: अभी गर्मी पड़ रही है, अभी जून का महीना चल रहा है तो।
0: जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अभी ये लास्ट गर्मी पड़ रही है
1: जी। घर पर ही है मैडम जी अभी तो।
0: आप कहाँ पे हैं?
1: कवासा से बोल रहे हैं, जिला गुना।
0: अच्छा। वैसे नाम क्या है आपका?
1: गोपाल।
0: अच्छा जी, तो और कैसा है?
1: बढ़िया है, अभी मैडम जी घर पर ही हैं सभी।
0: उधर का मौसम कैसा है?
1: मौसम और बदल भी हो रहा है अभी तो, ऐसा ही हो रहा है, धूप भी निकल रही है।
0: अच्छा, भोजन हो गया आपका?
1: हो गया भोजन तो।
0: चलिए बढ़िया है।
1: गाना सुनना है
0: जी?
1: गाना सुनना है।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का सुनना है, कुमार सानू लता मंगेशकर की आवाज में जी। बात
0: कौन सा सॉन्ग?
1: वो है ना, तुझे देखा तुझे जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम जी वाला।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: डेडिकेटेड है ना, मांगी लाल धाकड़ जी हैं, मांगी लाल चंदेल जी हैं, सुनील साहू जी हैं, मकसूद अनगढ़, इन्हीं के लिए है।
0: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैडम,
2: क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
2: मेरा भी बढ़िया है।
1: खाना हो गया है?
2: जी खाना हो गया है। आपका हो गया?
1: हाँ, हम भी खा लिए।
2: तो बताइए क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं, आए हैं ऊपर शोरूम में, छत पे आए। ऊपर
2: धूप नहीं लग रहा है?
1: नहीं, ऊपर नहीं है, अंदर है। अच्छा, मार रहे हैं
2: तो मौसम तो खराब है।
1: हाँ, बहुत खराब है, बहुत धूप निकला है।
2: तो धूप से बच के रहिए, घर में रहिए, पानी पीते
1: रहिए। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है।
2: बताइए क्या फरमाई थे आपकी?
1: गाना नहीं है, छोड़ के न जाओ पिया, वही गाना।
2: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना चाहती हैं
1: आपको? और सॉन्ग लिखी और सुनाना चाहते हैं।
2: ओके, एक बार नाम अपना बता देते।
1: प्रियंका जी, पुनः मुझसे
2: जी। ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैं सुवीर कुल बोल रहा हूँ, कोरिजमा जिला देवघर झारखंड में।
0: क्या हाल है आपका?
1: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं और आपके रेडियो रंजन के पूरे टीम कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, मेरे रेडियो रंजन के परिवार सारे अच्छे हैं। क्या हो रहा है अभी?
1: क्या हो रहा है? धूप बहुत ही है, घूमे बैठे हुए। आज ना दीजिए मैम, मदर का सिकंदर फिल्म बजाना किशोर कुमार की आवाज में, और साथ फिर तेरे बिना भी क्या जीना।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: जी आपको सुना, आप सुनेंगे, हम सुनेंगे और जितने भी रेडियो रंजन के श्रोता गाने सभी कोई सुनेंगे।
0: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello, hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलमाइन चॉइस में।
6: नमस्कार।
7: नमस्कार,
6: आप कौन बोल रही हैं?
7: मैं भारती बोल रही हूँ।
6: जी जी, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ मुंबई से। बढ़िया है, अच्छा है, अपना सुनाइए।
7: मेरा भी ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी?
6: क्या डिप्टी में डिप्टी चालू है अपना। आपसे पहला बार बात हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को।
7: जी, तो क्या करते हैं आप?
6: मेरा काम ड्राइविंग का है, मैं कंपनी में है।
7: बढ़िया है। भोजन हो गया आपका?
6: जी, सुबह नाश्ता हो गया है और दोपहर का लंच होगा 1 बजे।
7: बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी?
6: फरमाइश और सब मौसम का हाल चाल बताइए उधर गोपालगंज का।
7: गोपालगंज का मौसम तो अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्मी पड़ रही है।
6: अच्छा,
7: और उधर कैसा है?
6: इधर तो बारिश चालू हो गया है, मौसम ठंडा है, सुहाना मौसम है। हाँ,
7: बढ़िया है, उधर मौसम सुहाना है तो चलिए आपके लिए ठीक
6: है। इधर से मैं भगवान से बोलता हूँ कि भाई उधर भी जाए, इधर गर्म है। सुना दीजिए,
7: कौन सा
6: आशिकी आ गई, हमें आशिकी आ गई, अरिजीत सिंह की आवाज में है, यही वाला गाना सुनना है। और डेडिकेट आपको भी रहे और जितने भी रिमझिम सुनने वाले लिस्टर है सभी को डेडिकेट रहेगा ये सॉन्ग।
7: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक यू।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारा सब खैरियत आपका।
0: जी मैम आपको गाना सुनना था, प्रेम सर से गया था।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: शीशे की उम्र प्यार का, आधा पैसा देगा टूटा जो दिन किसी का है रे वाला।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: बस मेरे साथ में पार्टनर है आशीष सरकार, उसी को।
1: ओके, और सब बढ़िया है?
0: जी मैम बढ़िया है। मैं बहुत दिन बाद कॉल किया, सोचा देखता हूँ लगता है कि नहीं लगता कल लग गया।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: नहीं मिलता ना मैम काम से, तो आज थोड़ा सोचा ध्यान है कि आज सोमवार है, टाइम पे कॉल करके देखे। ये गाना कब तक आएगा?
1: ये गाना पूरी कोशिश रहेगी आज या कल बच जाएगा पूरा
0: टाइम, शाम के टाइम में 5 से 7।
1: हाँ हाँ
0: जी मैम, थैंक यू।
1: ओके चलिए गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हाँ सोना।
2: हाँ कौन?
1: आवाना तनी कोना।
2: अरे कौन बोल रहे हो?
1: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
2: अरे नहीं नहीं,
1: आवाना डीजे बजाता बस तार आवाज सुनाते नहीं के।
2: बस 2 मिनट रुक जाना।
1: हाँ हेलो।
2: हाँ हेलो।

0: चक्कर में 20 गो अगुआ फेर देनी रे दादा।
1: बुलाती है मगर जाने का नहीं।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
3: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes only on Chanda Cassettes.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:13 तथा सूर्यास्त 6:47 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। समय का सदुपयोग ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। तो श्रोताओं, हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:00 हैं। एक नई उम्मीद, नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आइए शुरू करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा इस मधुर और भक्तिमय गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, आपकी अपनी आवाज जो कहते

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।